ये था आज का अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस मातृ वंदना से।

0: जगजीत सिंह के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करते हैं मुर्गी घरों में प्रकाश की व्यवस्था के संदर्भ में। प्रकाश यानी रोशनी मुर्गी घर में बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी होता है। मुर्गी घर में उचित प्रकाश व्यवस्था मुर्गियों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, जिसकी वजह से मुर्गियां अधिक अंडे देती हैं। बिजली के बल्ब द्वारा प्रकाश सर्वाधिक उपयोगी होता है। इसके लिए प्रत्येक मुर्गी के लिए 1 वाट के अनुसार बल्ब का प्रयोग करना चाहिए। वैसे मुर्गी घर में मुर्गियों की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं और इन अलग अलग अवस्थाओं के लिए प्रकाश की ज़रूरत भी अलग अलग होती हैं। जैसे चूज़ों के लिए, युवा मुर्गियों के लिए, अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए प्रकाश की जो ज़रूरत होती है वो अलग अलग होती है, ताकि उनकी वृद्धि तथा

0: उत्पादन क्षमता को हम बनाए रख सकें। चूजों से हमारा तात्पर्य मुर्गी के उन बच्चों से है जो कि 8 सप्ताह तक के हैं, यानी 0 से 8 सप्ताह तक के मुर्गियों को लगातार प्रकाश की आवश्यकता होती है। शुरू शुरू में ब्रूडर का प्रकाश पर्याप्त होता है, परंतु जब हम मुर्गी के बच्चों को ब्रूडर से हटा लेते हैं तब प्रत्येक 100 वर्ग फुट स्थान के लिए 100 वाट का बल्ब लगाना पड़ता है। आइए अब देखें युवा मुर्गियों के लिए प्रकाश की व्यवस्था कैसे की जाए। अगर युवा मुर्गियों के दड़बे में प्रकाश की अवधि बढ़ा दी जाए तो इनमें प्रजनन क्षमता जल्दी आ जाती है तथा ये शीघ्र अंडे देने लगती हैं। इसके विपरीत अगर प्रत्येक दिन की प्रकाश की अवधि घटा दी जाए तो युवा मुर्गियों में शरीर की बढ़त कम हो जाती है तथा वे देर से अंडा देना शुरू करती हैं। युवा मुर्गियों यानी 8 से लेकर 20 सप्ताह तक की मुर्गियों को सूर्य की प्राकृतिक प्रकाश में पालना चाहिए। ये आवश्यक है कि मुर्गियां समय से पूर्व अंडा न देना प्रारंभ करें, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जल्दी अंडा देना प्रारंभ करने वाली मुर्गियां 2-4 सप्ताह पहले ही वयस्क हो जाती हैं और शरीर के उचित बढ़ाव के बिना ही छोटे आकार के अंडे देने लगती हैं, जो कि आर्थिक तौर पर हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा इन मुर्गियों में जो प्रोलैप्स की बीमारी होती है वो भी इसी कारण होती है। रात के समय मुर्गी घरों में पूरी तरह से अंधकार होना चाहिए। अंडे देने वाली मुर्गियों के दड़बों में 20 सप्ताह या 10% अंडे उत्पादन के समय कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन मुर्गियों को प्रत्येक दिन लगभग 16 घंटे प्रकाश, जो कि प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश दोनों मिलकर होता है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इस अवधि को घटाना नहीं चाहिए। अंडा उत्पादन की क्षमता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मुर्गियां जब 6 महीने तक अंडे दे दें तो उनके घरों में 1 घंटे अधिक प्रकाश अर्थात 17 घंटे प्रकाश की सुविधा मुहैया करवाई जाए। किसान भाइयों, हालांकि ये बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन इससे मुर्गियों के उत्पादन क्षमता पर सीधा असर पड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों पर गौर करेंगे और मुर्गी घरों में उचित प्रकाश व्यवस्था बनाए रखकर मुर्गी पालन से लाभान्वित होंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया।

0: वांगचुक के पंथी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately.
2: I know that paper leak is not a common issue. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
1: The Prime Minister said yesterday he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts. He said the departments worked continuously and

जहां जानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी बाराटांग मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी कैंबल भी आज रात 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल ही सवेरे 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और आज ही दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी आज ही दोपहर बाद 3:30 पर। एमवी रानी लक्ष्मी

शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा जलयान। आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर MV हडवे आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल शनिवार 25 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। और अब सुनिए कल शनिवार 25 तारीख को जाने वाले जलयानों के बारे में। MV भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल शनिवार 25 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन रविवार 26 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर MV रानी चंगा कल शनिवार 25 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्टेट आइलैंड कदमतल्ला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल 25 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी अगले दिन 26 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल शनिवार 25 तारीख को दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा जलयान। कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV हडवे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 25 तारीख को दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा जलयान। कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी कल ही दोपहर बाद 3:30 पर। शहीद द्वीप की यात्रा पर MV रानी चंगा कल शनिवार 25 तारीख को दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। और MV रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 25 तारीख को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा जलयान। अगले दिन 26 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा।

0: अभी आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष सुनने वाले सभी श्रोताओं को कुणाल का प्रेम भरा नमस्कार। श्रोताओं, समय एक ऐसी गतिमान चीज है जो ना आज तक किसी के लिए रुका है और आगे भी ना कभी रुकेगा। वक्त बहने वाली उन हवाओं की भांति है जिसका हम एहसास तो करते हैं पर हम उसे अपने पास रख नहीं सकते।

श्रोताओं, कभी कभी जीवन में हमें ऐसा लगने लगता है कि वक्त जो है वह कोई अजेय है, उसके साथ किसी का मुकाबला नहीं। कभी लगता है वक्त थम क्यों नहीं जाता, और जब हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं तब ऐसा लगने लगता है कि वक्त कटता ही नहीं।

श्रोताओं, हमें अपना जीवन बिना किसी तनाव के यूं ही जीना चाहिए, हंसते खेलते जीवन बिताना चाहिए। दोस्तों, सुख दुख जीवन के हिस्से होते हैं, किंतु समय एक ऐसा मरहम है जिससे ये दुख दूर हो जाते हैं।

0: श्रोताओ, इसी के साथ इंद्रधनुष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल बेन। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रामचरित मानस गान की 309वीं कड़ी।

अंगद की बात सुन रावण को क्रोध हो आता है। सामने खड़ा बंदर बाली पुत्र है ये जानकर रावण सकुचाया, किंतु उसे कुलनाशक कहकर उसकी भर्त्सना करते हुए बोला, तू तो अपने कुलरूपी बांस के लिए अग्नि रूप पैदा हुआ है, अपने को एक तपस्वी का दूध बताते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तेरा पिता कहाँ है और कैसा है वो? अंगद उत्तर देते हैं, कुछ दिनों बाद तुम स्वयं उनके पास जाकर उनका कुशलक्षेम पूछ लेना। सच है मैं कुल नाशक हूं और तुम कुल रक्षक हो, ऐसी बात तो अंधे और बधिर भी नहीं करते। तुम तो 10 शीश और 20 आंखों वाले हो। अंगद के वचन सुनकर रावण का क्रोध उबल पड़ता है, किंतु उसे अपने नीतिवान और धर्मपालक होने का भ्रम भी है, अतः अपने क्रोध पर काबू पाने का बड़प्पन दिखाता है। अंगद व्यंग्य करते हैं, तुम्हारी धर्मशीलता के बारे में मैंने भी सुना है। तुम्हारी धर्मशीलता का उदाहरण है

ने पराई स्त्री का हरण कर लिया है। अपनी बहन के नाक कान कटे देख धर्म का विचार करके ही तो तुमने क्षमा कर दिया था। बड़े भाग हैं मेरे जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया।

अभी आप रामचरित मानस गान की 390वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे भूपेंद्र और श्रीकांत पारगांवकर तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा की चौथी कड़ी।

नमस्कार श्रोताओं, गांधी चर्चा में बातें शांतिदूत गांधी की। हमने अपने पिछले अंक में कहा था कि गांधी जी ने एक संस्था वेजिटेरियन सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड के सदस्य बन गए थे। संस्था के सभी सदस्य सादा जीवन बिताते थे और अहिंसा में विश्वास करते थे। मोहनदास अंग्रेजों और उनके रहन सहन से बड़े प्रभावित थे और वे उन्हीं की तरह करारे क्लफ वाले कॉलर की कमीज पहनते, सर पर ऊंचा टोप पहनते, हाथों में चमड़े के दस्ताने, चांदी मुड़े मूठ की छड़ी लेकर चलते। उन्होंने एक बड़ा महंगा ओवरकोट भी खरीद लिया और शाम को पहनने के लिए 3-पीस सूट भी ले लिया। वह शाम को रोज सचकर घूमने जाते। अब उन्होंने 2 कमरों का अपार्टमेंट भी किराए पर ले लिया पश्चिमी संगीत और बॉलरूम नाच सीखने के लिए। एक शिक्षक भी रख लिया। लाख कोशिश करने पर भी मोहनदास वहाँ का नाच नहीं सीख सके। आखिर उन्होंने नाच सीखना बंद कर दिया। फिर मोहनदास ने वायलिन बजाना सीखना शुरू

किया, लेकिन शीघ्र ही वे वायलिन तथा शिक्षक दोनों से ऊब गए और उन्होंने दोनों से छुट्टी पाई। एक दिन मोहनदास ने अपने आप से प्रश्न किया, आखिर उनकी असफलता का कारण क्या है। आत्मविश्लेषण में उन्होंने पाया कि वे बेहद शर्मीले व संकोची हैं, इसीलिए वे कुछ भी नहीं कर पाते। अपनी कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने भाषण की कला सिखाने वाले स्कूल में दाखिला ले लिया। अपने घर में सुबह सुबह वह शीशे के सामने खड़े हो जाते, सही भाव भंगिमा के साथ भाषण देने का अभ्यास करते और आत्मविश्वास से बोलते, लेकिन जैसे ही लोगों के बीच बोलने का मौका आता उनकी बोली बंद हो जाती। 3 महीने के प्रयोग के बाद वे समझ गए कि ये सब बेकार की बातें हैं और वे पूरे मन से पढ़ाई लिखाई में जुट गए। श्रोताओं, मोहनदास ने लंदन मैट्रिकुलेशन परीक्षा दी। परीक्षा में वह लैटिन विषय में असफल रहे। उन्होंने फिर मेहनत की और दूसरी बार सफल हो गए। उन्होंने फ्रेंच भाषा भी सीखनी शुरू कर दी। काफी सोच विचार कर मोहनदास ने अपने खर्चे घटाने का प्रयास किया। वह एक कमरे में रहने लगे। उन्होंने चाय कॉफी पीनी बंद कर दी और स्वयं ही अपना शाकाहारी भोजन पकाने लगे। जहाँ तक संभव होता वे पैदल ही यात्रा करते। रात को सोने से पहले रोज दिन भर का हिसाब लिखते। मोहनदास को पढ़ने का शौक था ही। एक दिन पुस्तकों की दुकान में उन्हें एडविन अर्नॉल्ड रचित गीता का अंग्रेजी अनुवाद मिल गया। उन्होंने पुस्तक पढ़ी और वे निस्वार्थ भाव से कर्म करने का अर्थ समझ गए। ठीक व उचित पथ पर मनुष्य को अड़िग रहना चाहिए, ये संदेश उनके मन में घर कर गया और वे अपना हर कार्य इसी के तराजू में तौलने लगे। उन्होंने बाइबल की भी एक प्रति खरीद ली। उन्हें विशेषकर न्यू टेस्टामेंट में सर्मन ऑन द माउंट बड़ा अच्छा लगा। मोहनदास अब 22 वर्ष के नवयुवक थे। उन्होंने खूब मेहनत करके वकालत की परीक्षा पास कर ली थी और वे 12 जून 1891 को पानी के जहाज से भारत रवाना हो गए। जहाज में उन्होंने काफी लोगों से दोस्ती कर ली। लंबी यात्रा के बाद जब उनका जहाज बंबई बंदरगाह पहुंचने वाला ही था, मोहनदास ने शीशे के सामने जाकर अपने को देखा। पश्चिमी फैशन वाले सूट में वे खूब जच रहे थे। पहले से अधिक स्वस्थ और तरोताजा भी लग रहे थे। जहाज ने लंगर डाला। बंबई बंदरगाह में वे जहाज के डेक पर खड़े हो गए। उन्होंने अपने बड़े भाई को देखा और वे दौड़कर नीचे उतरे और भाई लक्ष्मीदास के गले लग गए। भैया, बा कैसी है? घर में सब लोग कैसे हैं? कस्तूरबाई ठीक है। तुम्हारा बेटा हरिलाल भी अब 4 वर्ष का है और खूब बातें करता है, लक्ष्मीदास ने कहा। बा कैसी है? मोहनदास ने अधीर होकर पूछा। माँ नहीं रही, कुछ दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। मोहनदास धक से रह गए। उनको लगा जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। आंखें भर आई। उनकी बा उनके लिए बहुत अपनी थी। लक्ष्मीदास ने उनका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, आओ चलो। दोनों भाई बाहर आ गए और रेलगाड़ी से वे राजकोट के लिए रवाना हो गए। माँ के बिना राजकोट का घर बहुत ही सूना सूना सा लग रहा था, लेकिन उनका नन्हा बेटा हरिलाल आनंद से भरा था। कस्तूरबाई बड़ी हो गई थी, अब वे और अच्छी लगती थी। घर में बहुत सारे बच्चे थे। मोहनदास की सभी से बड़ी मित्रता हो गई। सुबह सुबह जब वे कसरत करते तो बच्चे भी उनके साथ कसरत करते। कभी कभी वह उन्हें बाहर घुमाने भी ले जाते और खूब कहानियां सुनाया करते। मोहनदास इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर आए हैं, ये समाचार राजकोट में तेजी से फैल गया। उनके भाई लक्ष्मीदास पहले से ही वहां वकालत कर रहे थे। वे बड़े गर्व से भाई को अपने मित्रों से मिलवाते थे। मोहनदास अपने भाई की ही फर्म में वकालत का काम करने लगे, लेकिन वे अदालत में बहस नहीं कर पाते थे। उन्होंने फिर

विश्लेषण किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शायद उनके भाई की उपस्थिति ही उनके संकोच का कारण है। मोहनदास ने निश्चय किया कि वे बंबई जाकर वकालत करेंगे। वे बंबई चले गए। लंबी प्रतीक्षा के बाद उन्हें एक गरीब औरत का पहला मुकदमा मिला। 30 रुपए फीस तय हुई। जब वे पहले गवाह से जिरह करने जा रहे थे तो वे सब कुछ भूल गए। निराश होकर वे अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। बाद में उन्होंने उस औरत को 30 रुपए लौटा दिया। अपनी असफलता पर वे बड़े दुखी हुए। तभी एक दिन उन्हें अपने बड़े भाई लक्ष्मीदास का पत्र मिला। पत्र में लिखा था, मेरा एक काम कर दो, मेरी ओर से बंबई में ब्रिटिश एजेंट से बात कर लो। अपने भाई का संदेश लेकर मोहनदास विश्वासपूर्वक उस गोरे आदमी से मिलने गए। वह बहुत देर तक बाहर प्रतीक्षा करते रहे। आखिर जब गोरा एजेंट बाहर आया, उन्होंने मोहनदास के साथ बड़ा खराब व्यवहार किया और उनके भाई का काम भी नहीं किया। मोहनदास को बहुत बुरा लगा, साथ ही अपनी असफलता पर भी दुख हुआ। तो गांधी चर्चा में आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अतः मछुआरों को 27 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद सवेरे 7:00 सुनिए जन सूचनाएं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा 7:05 पर। सवेरे 7:15 पर देश गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागनी, जबकि आप विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर कानून की बात कार्यक्रम के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 विषय पर लॉयर सूचना रे से ली गई भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। साथ ही आप आनंद ले पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे सलमा आगा, मोहम्मद अजीज, तलत अजीज और मनहर उदास। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का लुत्फ उठाइए सवेरे 9:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर श्याम गांगुली का हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन आप सुन पाएंगे। संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे सवेरे 10:00। दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1335वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।

निकुमारी कार्यक्रम में 11:30 पर श्रोता कुछ लोकगीत सुन पाएंगे। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम होगा। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। दोपहर 1:10 पर महफिल कवाली कार्यक्रम में कवाल होंगे यूसुफ आज़ाद और रानी रूपलता। फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का आनंद आप ले पाएंगे दोपहर 1:30 पर। और दोपहर बाद 2:30 मौसम की जानकारी के बाद हमारे प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत लाइव फोन आउट कार्यक्रम होगा हेलो डियर फ्रेंड्स और 3:30 पर कार्यक्रम होगा यूं ही गाती रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम से, जिसमें एक ही श्रोता द्वारा पसंद किए हुए गीत सुनवाए जाएंगे। बांग्ला कार्यक्रम में 5:30 पर सुनिए कुछ आधुनिक गीत। संध्या 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर ए कुंडू से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी वर्षा काल में मुर्गी पालन। समाचार तरंगिणी सुनिए 6:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 18वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:45 पर। 6:55 पर हम आपको कार्यक्रमों के विवरण से अवगत करवाएंगे। संध्या 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। दिल ने फिर याद किया फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए 7:20 पर। संध्या 7:30 पर युवाणी के तहत फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो फ्रेंड्स। चित्रपट संगीत का लुत्फ उठाइए 8:15 पर। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार तत्पश्चात गौरव का, जबकि 10:10 आप विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा 8:00 संसद समीक्षा, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर करंट अफेयर्स कार्यक्रम और 10:00 संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 0.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 95% और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:05 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47। और अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज सवेरे 7:15 पर देश गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागनी, जबकि आप विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भोले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर कानून की बात कार्यक्रम के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 विषय पर लॉयर सूचना रे से ली गई भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी। साथ ही आप आनंद ले पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का भरपूर लुत्फ उठाइए सवेरे 9:00। संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे सवेरे 10:00।

निकोबारी कार्यक्रम आज आप सुन पाएंगे दिन के 11:30 पर, जिसके तहत आप कुछ लोकगीतों का आनंद ले पाएंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का आनंद आप ले पाएंगे दोपहर 1:30 पर।

दिल ने फिर याद किया फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए 7:20 पर। इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। आपदा प्रबंधन निदेशालय की ओर से आज कार्बाइन्स को बीच पर तेल रिसाव मॉक अभ्यास किया जाएगा। ओडिशा के पुरी के साथ द्वीप समूह में भी बौद्धा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। महाव्यापी नाट्य कार्यशाला के समापन अवसर पर आज शाम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक का मंचन किया जाएगा और श्री विजयपुरम में 27 जुलाई से 7 अगस्त तक सर्किट बैठक का आयोजन किया जाएगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। आपदा प्रबंधन निदेशालय में तेल रिसाव मॉक अभ्यास की अंतिम तैयारियों के लिए कल टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। आपदा प्रबंधन निदेशक प्रियंका कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन और सभी संबंधित लाइन विभागों एवं हितधारक एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा के दौरान भारतीय तटरक्षक बल ने प्रस्तावित तेल रिसाव घटना और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया रोकथाम रिसकर्म की तैनाती, तटरेखा सफाई मूल्यांकन तकनीक के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के बारे में बताया। इस अभ्यास का उद्देश्य आज सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कार्बाइन स्कोव बीच पर आयोजित होने वाले तेल रिसाव मॉक अभ्यास की समीक्षा करना था। विभाग ने आम जनता से अभ्यास के दौरान न घबराने की अपील की है।

0: ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुड़िचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की औपचारिक वापसी यात्रा कराई जाएगी। इस अवसर पर द्वीप समूह में उत्कल समाज की ओर से बहुधा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर आज सुबह 8:30 बजे से महापूजा, हवन और आरती तथा दोपहर 12 बजे से अन्नदानम की व्यवस्था की गई है। ये यात्रा आज दोपहर 2 बजे से शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरेगी।
1: प्रिय दीपवासियों, भगवान जगन्नाथ जी का पावन बाहुड़ा यात्रा का शुभ अवसर है। इस पवित्र दिन भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी का 8 दिन श्री गुंडीचा मंदिर में विराजमान होने के बाद श्री मंदिर लौटेंगे। इस मंगलमय अवसर पर मैं सभी दीपवासियों को कल समाज और राजस्थान मंच का ओर से सभी से आग्रह करता हूँ कि उत्साह के साथ बाहुड़ा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता करें तथा इस दिव्य परम्परा को अत्यंत सफल और गरिमामय बनाए।
0: अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन में स्थायी जैविक प्रदूषक पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही शुरू की है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स अत्यधिक जहरीले रसायन हैं जो मानव स्वास्थ्य, वन्य जीवों व पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। 2004 में लागू हुआ स्टॉकहोम कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को इन रसायनों से बचाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पर्यावरणीय संधि है। भारत अब तक 19 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की पुष्टि कर चुका है। पुष्टि के लिए POPS को विनियमित करने के लिए मंत्रालय ने पॉलीक्लोराइनेटेड बाईफेनिल्स विनियम आदेश 2016 और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स नियम 2018 को अधिसूचित किया है। नियामक अधिकारियों द्वारा इन नियमों के अनुपालन की निगरानी की जा रही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध किसी भी रसायन से निपटने वाले सभी औद्योगिक इकाइयों, निर्माताओं, आयातकों, निर्यातकों, व्यापारियों, अनुसंधान संस्थानों, प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी संगठनों और अन्य प्रतिष्ठानों के निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी समिति के सदस्य सचिव के पास 27 जुलाई तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। जानकारी ईमेल dstpcc@andamans.andy.nic.in के माध्यम से भी जमा की जा सकती है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की विस्तृत सूची निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूप के साथ ANPCC की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है नाट्य कार्यशाला और सर्किट बैठक। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कला एवं संस्कृति निदेशालय की ओर से युवाओं और आम जनता के बीच रंगमंच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के सहयोग से महाव्यापी नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के समापन अवसर पर आज कलाकारों द्वारा शाम 5:45 पर अंडमान क्लब में महान लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन द्वारा लिखित नाटक का मंचन किया जाएगा। कार्यशाला निदेशक सुरेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में इस नाटक का मंचन किया जाएगा। श्री विजयपुरम में 27 जुलाई से 7 अगस्त तक सर्किट बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक के दौरान न्यायिक सदस्य उर्मिला दत्ता सेन और प्रशासनिक सदस्य सुचित कुमार दास मामलों की सुनवाई करेंगे। इस अवधि के दौरान नए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। जिन विभागों के मामले लंबित हैं वे संबंधित मामलों के दस्तावेजों के साथ सरकारी वकील या पैनल अधिवक्ताओं से संपर्क करें। विभागाध्यक्षों से भी कहा गया है कि वे अपने नोडल अधिकारियों को सुनवाई के दिन आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिकरण में उपस्थित रहने का निर्देश दें। आबकारी विभाग की ओर से शराब ब्रांडों के पंजीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। इस

0: संबंध में हितधारकों से टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करने के लिए इसे सार्वजनिक डोमेन में जारी कर दिया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य ब्रांड पंजीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और संघ राज्य क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है। निर्माता, वितरक, लाइसेंस धारक और अन्य संबंधित हितधारक अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या टिप्पणी 2 अगस्त तक उपायुक्त कार्यालय को ईमेल आईडी dcand.and@nic.in के माध्यम से भेज सकते हैं। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष पी उमर ने कार्य एवं विकास समिति के अध्यक्ष पी ए शराफुद्दीन, जिला परिषद सदस्य ए उमर, अब्दुल बशीर, अधीक्षण अभियंता एस के गुप्ता और दक्षिण अंडमान जिला परिषद की इंजीनियरिंग टीम के साथ ग्राम पंचायत पिंबरलीगंज के तहत चल रहे 2 ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अध्यक्ष ने चल रहे कार्यों की समीक्षा की तथा इंजीनियरिंग अधिकारियों को दोनों परियोजनाओं को निर्धारित समय भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। खेल एवं युवा मामले निदेशालय की ओर से प्रशासनिक कारणों के चलते 1 अगस्त से 5 अगस्त तक आयोजित होने वाले बैडमिंटन टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। निदेशालय ने कहा है कि नशा मुक्ति अभियान के उद्देश्य से 27 जुलाई से 9 अगस्त तक वॉलीबॉल टूर्नामेंट के आयोजन के कारण ये निर्णय लिया गया है। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में अकादमिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि संकाय के पैनल तैयार करने हेतु अस्थायी योग्यता सूची कॉलेज की वेबसाइट के अलावा कॉलेज के सूचना पट पर दर्शा दी गई है। इस संबंध में दावे और आपत्तियां कल तक अपने निवास प्रमाण पत्र के साथ जमा कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आपदा प्रबंधन निदेशालय की ओर से आज कार्बाइन्स को बीच पर तेल रिसाव मॉक अभ्यास किया जाएगा। ओडिशा के पुरी के साथ द्वीप समूह में भी बहुधा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। महाव्यापी नाट्य कार्यशाला के समापन अवसर पर आज शाम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक का मंचन किया जाएगा और श्री विजयपुरम में 27 जुलाई से 7 अगस्त तक सर्किट बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, देश के लिए प्यार सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि हर दिल की पहचान होती है। जब यही भावना शब्दों में ढलती है तो हर एक व्यक्ति के मन में नया जोश और उत्साह भर देती है, जो हमारे वीरों की याद दिलाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ बेहतर करें। वतन की खुशबू से महकते हैं हम, इसी भूमि पे जन्म लिया है हमने, हमारे दिल में है वो देशभक्ति का जज्बा, हमेशा यही प्यार रहेगा हम में।

श्रोताओं, जब भी देशभक्ति की बात आती है तो हम वीर शहीदों के बलिदानों को कैसे भुला सकते हैं, जिन्होंने भारत देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन की आहुति बिना किसी शर्त के दे दी थी। जो देश के लिए शहीद हुए उनको हमारा सलाम। अपने खून से इस ज़मीं को सींचा उन सभी बहादुरों को हमारा सलाम।

देश रागिनी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश रागिनी। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं, आप प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

श्रोताओं, मुश्किलें रास्ता नहीं रोकती, सिर्फ हौसलों को आजमाती है। जो हिम्मत नहीं हारते उनकी राहें खुद आसान हो जाती है। अंधेरे चाहे कितने भी गहरे हो, उम्मीदें अक्सर रोशनी बन जाती है। परेशान होने से कुछ नहीं मिलता, धैर्य से उलझने सुलझ जाती है। जी हाँ श्रोताओं, नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और आज के इस सफर में मैं हूँ आपके साथ सुनीता।

0: तो श्रोताओं, सबसे पहले हम रुख कर रहे हैं कानून की बात कार्यक्रम की ओर।
1: कानून की बात कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बातें करेंगे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 के बारे में, यानी पॉश एक्ट 2013 के बारे में। इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है लॉयर सूचना रे को। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस प्रोग्राम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो आप बताएं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 ये है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
2: ये अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने

0: और शिकायतों के निवारण के लिए बनाया गया है। इसकी आवश्यकता विशाखा गाइडलाइंस को वैधानिक रूप देने और महिलाओं को एक सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पड़ी थी।
1: किन किन संस्थानों और कार्यस्थलों पर ये कानून लागू होता है?
0: ये कानून संगठित और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है, जिसमें सरकारी कार्यालय, निजी कंपनियां, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, एनजीओ और यहाँ तक कि खेल संस्थान पर भी लागू होता है।
1: जी, कानून के अनुसार यौन उत्पीड़न से क्या तात्पर्य है? क्या केवल शारीरिक छेड़छाड़ ही यौन उत्पीड़न है या मौखिक और गैर मौखिक व्यवहार भी इसमें शामिल है?
0: इसमें कोई भी अवांछित यौन व्यवहार शामिल है, जैसे शारीरिक संपर्क, यौन संबंध की मांग, यौन रंजित टिप्पणियां, अश्लील साहित्य दिखाना या यौन प्रकृति का कोई शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण।
1: देखिए, आजकल ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से उत्पीड़न किया जाता है, हम सुनते हैं, क्या ये भी इस अधिनियम के अंतर्गत आता है?
0: जी हाँ, डिजिटल माध्यम से किया गया उत्पीड़न भी इस कानून के दायरे में आता है। सेक्शन 2O के अनुसार कार्यस्थल की परिभाषा व्यापक और समावेशी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑनलाइन बातचीत और प्लेटफॉर्म के संबंध में अधिनियम यौन प्रकृति के किसी भी अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण को कवर करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और सोशल मीडिया, ईमेल, मैसेजिंग ऐप आदि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले यौन उत्पीड़न शामिल है।
1: जी,
0: जब तक यौन उत्पीड़न की घटना का कार्यस्थल या रोजगार संबंध से संबंध है, तब तक ये इस कानून के दायरे में आ सकती है।
1: कंप्लेंट की बात आती है, जब उत्पीड़न किया जाता है किसी के विरुद्ध, तो कंप्लेंट किस तरह से करें?
0: इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी एक आंतरिक समिति है, जिसे हर उस संस्थान में अंडर सेक्शन 4 ऑफ पॉश एक्ट से बनाना अनिवार्य है, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी है। इस समिति को एविडेंस एकत्र करने के लिए सिविल कोर्ट्स की पावर दी गई है। इस शिकायत समितियों को शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर जांच शुरू करने से पहले सुलह का प्रावधान होता है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना और निष्पक्ष जांच करना है।
1: सूचना रे जी, अब ये बताएं कि ICC में कितने सदस्यों का होना अनिवार्य है, और यदि किसी संस्थान में ICC का गठन नहीं किया गया है, तब पीड़िता क्या कर सकती है?
0: जी, ICC में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। पहला सदस्य है अध्यक्ष, और इस पद के लिए संगठन की वरिष्ठ स्तरीय महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ICC में कम से कम 2 कर्मचारी होनी चाहिए।
1: जी,
0: आदर्श रूप से महिला अधिकारों, सामाजिक कार्य या कानूनी विशेषज्ञता की बैकग्राउंड से। अंत में ICC में एक और संगठन, जैसे कि NGO या ऐसे संगठन का बाहरी सदस्य होना भी जरूरी है।
1: जी,
0: और अगर ऐसी कोई ICC संगठन नहीं है, तो उस दौरान एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी बनाने की भी एक प्रावधान है, जिसमें सेक्शन 6 ऑफ पॉश एक्ट 2013 के अंतर्गत किसी भी कंपनी या फिर किसी भी संस्था में इसे स्थापित करना अनिवार्य है।
1: अब ये बताएं कि शिकायत मिलने के बाद जांच प्रक्रिया ये कैसे चलती है?
0: घटना के 3 महीने के भीतर लिखित शिकायत देनी होती है, जिसे ICC परिस्थितियों के अनुसार अगले 3 महीने तक बढ़ा सकती है। सबसे पहले पीड़िता को घटना के 3 महीने के भीतर लिखित शिकायत सहायक दस्तावेजों के साथ एवं कुछ गवाहों के साथ ICC को देनी होती है। ICC शिकायत प्राप्त होने के 7 वर्किंग डेज के भीतर प्रतिवादी को नोटिस भेजती है। यदि शिकायतकर्ता चाहे तो जांच शुरू होने से पहले ही ICC सुलह करा सकती है, लेकिन इसमें कोई मॉनिटरी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। यदि सुलह नहीं होती है, तो ICC सबूत और गवाहों की जांच करती है। दोनों पक्षों को अलग अलग सुना जाता है। पूरी जांच प्रक्रिया को 90 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य है।
1: और जांच के दौरान गोपनीयता बनाए रखने के लिए क्या प्रावधान है?
0: पॉश एक्ट 2013 की सेक्शन 16 के अनुसार पीड़िता, आरोपी और जांच की किसी भी जानकारी को सार्वजनिक करना या मीडिया में साझा करना प्रतिबंधित है।
1: यदि आरोप सिद्ध हो जाए, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है?
0: पॉश एक्ट 2013 के सेक्शन 13 के अनुसार ICC की जांच के बाद यदि आरोप सिद्ध होते हैं,

0: एम्प्लॉयर को सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई करने की सिफारिश की जाती है। इसमें माफीनामा, पदोन्नति या इंक्रीमेंट पर रोक, पद से हटाना या नौकरी से बर्खास्त भी शामिल हो सकती है। इसके उपरांत सेक्शन 15 के तहत पीड़िता के मानसिक कष्ट, करियर में नुकसान और मेडिकल एक्सपेंडिचर के आधार पर अपराधी को हर्जाना देना पड़ सकता है। यदि एम्प्लॉयर पॉश एक्ट के नियमों का पालन नहीं करता है तो सेक्शन 26 के तहत उस पर 50,000 रुपयों तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
1: भारतीय न्याय संहिता इसके तहत क्या प्रावधान है?
0: BNS की सेक्शन 75 के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए 3 साल तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट या जुर्माना हो सकती है, एवं उत्पीड़न केवल यौन टिप्पणी यानी सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स तक सीमित है तो 1 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है।
1: सुषमा रे जी, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं झूठी शिकायतें करती हैं, तो उसके लिए क्या प्रावधान है?
0: पॉश एक्ट 2013 के सेक्शन 14 के अंतर्गत शिकायतकर्ता को दंडित करने का प्रावधान है यदि शिकायत दुर्भावनापूर्ण इरादे से झूठी पाई जाती है तो। पॉश एक्ट की सेक्शन 14 और पॉश नियमों के नियम 10 के साथ मिलकर शिकायतकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत दर्ज करने या झूठे या भ्रामक दस्तावेज या एविडेंस प्रस्तुत करने की साजिश में शामिल होने पर दंड का प्रावधान करती है। जुर्माना हो सकता है
1: जी,
0: या तो ज्यादा से ज्यादा होने से इम्प्रिजनमेंट तक का भी जा सकती है।
1: सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाने में पुरुष सहकर्मियों की क्या भूमिका हो सकती है?
0: पहला है कि पुरुषों को पॉश एक्ट के प्रावधानों को समझना चाहिए और ये जानना चाहिए कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए क्या अवांछनीय व्यवहार की श्रेणी में आता है। अगला है बाईस्टैंडर इंटरवेंशन, यानी यदि वे किसी महिला के साथ अनुचित व्यवहार होते देखते हैं तो चुप रहने के बजाय उसका विरोध करना चाहिए या उचित माध्यम जैसे ICC को सूचित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पुरुष सहकर्मियों से आपस में होने वाली यौन टिप्पणियों या अश्लील चुटकुलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए ताकि एक प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल सोसाइटी की विकास हो सके। और सर्वोपरि जिम्मेदारी है कि वे पीड़ित महिला को शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करें और इसके प्रति किसी भी प्रकार के प्रेजुडाइज या डिस्क्रिमिनेशन ना होने दें।
1: कई बार ऐसा होता है महिलाएं, उनके साथ गलत तो होता है लेकिन जब घर में इस बात का वो जिक्र करती हैं तो घर वाले भी कहते हैं कि समाज में जो उनका सम्मान है उस पर आँच ना आए, इस वजह से वो इस बात को दबा देना चाहते हैं कि शिकायत ना करें। ऐसे में उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप?
0: अगर एक गलत कार्य को हम नहीं रोकेंगे, हो सकता है वो एक गलत काम आगे जाके और 10 गलत काम को जन्म दे, तो इसीलिए ज़रूरी है कि शुरुआती तौर पे ही उसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाए
1: जी।
0: और जो निजी लोग हैं उस महिला के, जो अपने सगे लोग हैं,
1: जो घर वाले हैं
0: जी, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए महिला को, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे आए, हिम्मत जुटाए और कंप्लेन करे।
1: कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं आगे आने से डरती हैं कि कहीं उनके करियर पे कोई प्रभाव ना पड़ जाए, उनके करियर पे रुकावट ना आ जाए।
0: देखिए, ये जो इंटायर एक्ट है ये रिटेलिएशन से भी प्रोटेक्ट करती है महिलाओं को। अगर कंप्लेन करने के बाद किसी तरह से उनके ऊपर अत्याचार की जा रही है एम्प्लॉयर द्वारा, तो उस केस में भी उस महिला को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जहाँ पे भी वो काम कर रही है वहाँ से ट्रांसफर करवाने की भी प्रावधान है ताकि वो सुरक्षित रहे। महिलाओं की सुरक्षा ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इस एक्ट के तहत, इसीलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर कंप्लेंट होती है तो उस दौरान उस महिला को एम्प्लॉयर के कॉन्टेक्ट से दूर रखा जाता है, उसको एक सेफ जोन पे डाल दिया जाता है। और अगर उसके बाद भी ऐसी कोई कंप्लेंट आती है कि एम्प्लॉयर द्वारा टॉर्चर की गई है महिला को किसी तरह से, तो उस केस में एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में दोबारा से और एक जांच शुरू की जा सकती है।
1: तो ऐसे में इस एक्ट के बारे में महिलाओं को अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए, ये जानकारी कहाँ से वो जुटाए?
0: ये जानकारी जुटाने के लिए वो इंटरनेट के द्वारा जान सकती है, जैसे कि गूगल में अगर उन्होंने सर्च किया कि पॉश एक्ट क्या है, सबको जान सकती है। और इसकी अगर बैकग्राउंड जानना है तो विशाखा गाइडलाइंस को पढ़ सकती है कि उनके पास कितनी तरह के अधिकार है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड से अगर बिलोंग करती है जिसमें कि उनका पूरा का पूरा करियर पर्सपेक्ट किसी एम्प्लॉयर के हाथ में है, तो उस केस में तो और भी डरना नहीं चाहिए।
1: अंत में आप जो हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं हमारे श्रोता, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
0: पॉश एक्ट 2013 केवल प्यूनिटिव नहीं, प्रिवेंटिव भी है।

0: मतलब कि इसे दंडात्मक नहीं बल्कि इसे रोकथाम में भी यूज की जाती है। कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को ये समझना चाहिए कि कार्यस्थल पर प्रोफेशनल और सेफ एनवायरनमेंट मेंटेन करना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि पीड़िताओं को इस बात की ज्ञान होना ज़रूरी है कि उन्हें अपने साथ हो रहे उत्पीड़न से डर के मौन नहीं रहना है, क्योंकि ये अधिनियम उन्हें कॉन्फिडेंशियलिटी और किसी रिटेलिएशन से सुरक्षा प्रदान करती है। शिकायत दर्ज करने के लिए शी बॉक्स नामक एक ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध है जिसकी वो इस्तेमाल कर सकती है। अंत में मेरा यही कहना है कि जब हर व्यक्ति एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करेगा तभी सही मायने में इक्वल अपॉर्चुनिटीज वाला कार्यस्थल बन पाएगा।
1: तो हम समझते हैं कि आज हमारी जो बातचीत हुई है महिलाओं को इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी और वो निडर होकर अपने कार्यस्थल पर काम करेंगे। सूचना रे जी, आज आप कार्यक्रम में आई, समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।

0: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 कानून की बात कार्यक्रम के तहत अभी आप इस विषय पर लॉयर सूचना रे से ली गई ये पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थी जयशीला। श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में कोई आपसा। इस फिल्म का ये गीत बोल समीर के हैं, वधुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

शिखर, अब सुनिए इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, बोल सुधाकर शर्मा के हैं।

0: श्रोताओं, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, हर कोशिश का फल मिलता है। नहीं रहती ये रात सदा, हर अंधेरा रोशनी में ढलता है। सपनों की राह आसान नहीं, पर हौसलों से आसमां मिलता है। भरोसा रखो अपने कदमों पर, वक्त एक दिन ज़रूर बदलता है। जी हाँ श्रोताओं, इसी विचार के साथ मैं सुनीता आप सबों से विदा लेती हूँ। आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, सुप्रभात।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोड बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
6: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विधि कदम उठाए गए, गुनहगारों को

0: पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
0: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत

0: संबंध रहा है जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुकारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुदा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
3: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं की पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या

0: से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
3: मैंने fast track court के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। Fast track court और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately.
3: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है।

0: श्रोताओं, इस समय आप आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके तहत आज हम आपको चंद गज़लें सुनवा रहे हैं। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं तलत अज़ीज़ की आवाज़ में ये गज़ल।
1: हाज़रीन, आज की शाम की मैं पहली गज़ल पेश करता हूँ जिसको आप खूब जानते हैं और पहचानते हैं। हाँ जी हाँ। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। सही शहरी साहब का कलाम, लेकिन आज मैं इसमें कुछ नए अशआर पेश कर रहा हूँ और एक कथा जिसको नुसरत बदर साहब ने लिखा है, तो गौर फरमाइएगा।

तलत अज़ीज़ के गाए इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहानी। कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं शोर इस फिल्म के गीत से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों ने। बोल संतोष आनंद के हैं, वधुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

0: कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में तैयार लीजिए। अब सुनिए मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में बोल अनजान के हैं।
1: Hey man, you get this sort of music, eh? You like it?

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल यूविन पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: HIV/AIDS से जुड़े सभी सवालों के लिए आज ही टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस फिल्म में गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं अमर अकबर एंटोनी। इस फिल्म का ये गीत, इस गीत को गाया है किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में प्रेम गीत, इस फिल्म का ये गीत। बोल इंदिवर के हैं,

और अब अंत में पेश है नीरज का लिखा एवं एसडी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है शर्मिली।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपको श्याम गांगुली का हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन सुनवा रहे हैं। तो लीजिए सुनिए श्याम गांगुली का सरोद वादन पर बजाया राग अहीर भैरव, आलाप जोड़ व विलंबित रचना, 3 ताल में निबद्ध है।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप श्याम गांगुली का सरोद पर बजाया राग अहेर भैरव सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं।
1: इट्स रेनिंग ऑफर्स ऑन द न्यू एज बलेनो दिस सीजन। Upgrade to the bold and techie, new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
0: लीजिए अब सुनिए दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

आज हम एक और नए दिन की तरफ आगे अग्रसर हो रहे हैं। आज भारत के लिए एक और नया दिन, आज इस विश्व के लिए एक और नया दिन, नई उम्मीदें, नए ख्वाब या फिर नई चिंताएं, नए लक्ष्य, नई आवाज, नई पहचान, नया दिन, नई रात, नए लोग, नए विचार, और इन सब के पीछे भारत की वो नींव जो सदियों से कई करोड़ लोगों ने रखी। संदेश टू सोल्जर्स में हम बात करते हैं हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के उन जवानों की, उन अफसरों की, जिन्होंने अपने शौर्य की गाथा गाने पर मजबूर कर दिया, देश के प्रति अपना योगदान, अपना समर्पण देने के लिए वो पीछे नहीं हटे। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम पर, महावीर चक्र से सम्मानित 1950

1961 और 1971 के वॉर हीरो, इंडियन एयरफोर्स के लेट विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम। कैनबरा की फ्लाइंग स्क्वाड्रन का हिस्सा थे। अफ्रीका के देश कांगो में यूएन पीस कीपिंग फोर्स का एक हिस्सा रहे। 1965 और 1971 की जंग में हमारे लड़ाकू विमान को उन्होंने दुश्मन की उस चालाकी, उस चुनौती के सामने लाखड़ा कर दिया और भारत के लिए विजयी परचम लहराया। आज हम फिर से गाथा गाएंगे हमारी इंडियन एयरफोर्स की, जिसके साथ न जाने कितने टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ और जामास पायलट इसका हिस्सा है। द इंडियन

संदेश टू सोल्जर्स में आज हम बात कर रहे हैं लेट विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की महावीर चक्र से जो सम्मानित किए गए। इसके साथ साथ उन्हें वायुसेना मेडल भी दिया गया। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, वक्त है अपने वॉर हीरो से अपने देशवासियों को मिलाने का, इसीलिए संदेश टू सोल्जर्स में हम लेकर आए हैं कहानी नहीं बल्कि हकीकत विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। इनका जन्म 23 जुलाई 1933 को इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी थी इनकी फैमिली, इनका परिवार। आपके पिता श्री नीलकंठ पद्मनाभ एक जाने माने फिजिसिस्ट थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे और अहिल्याबाई होलकर कॉलेज में प्रिंसिपल भी रह चुके थे। माँ भी एक अकम्प्लिश्ड एजुकेटर थी और एजुकेशन की फील्ड में काफी देर तक जुड़ी रही और रिटायर हुई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऐसी एक समृद्ध पढ़े लिखे परिवार से पद्मनाभ गौतम आगे निकल कर आए और फिर इंडियन एयरफोर्स की 16 स्क्वाड्रन के साथ जा जुड़े। इनकी कहानी अगर वॉर की बात की जाए तो शुरू होती है 1965 की लड़ाई के साथ, लेकिन हम इनके साथ सबसे पहले 1961 की कहानी बताना चाहेंगे जहां उन्हें एक अहम इंटरनेशनल मिशन के लिए चुना गया, कांगो में यूनाइटेड नेशंस का पहला भारतीय संचालित शांति रक्षा अभियान। 6 दिसंबर 1961 को उन्हें काटंगा में कोलवेजी एयरफील्ड पर हमला करने के लिए कहा गया, जो एक बहुत ही जरूरी और जोखिम भरा मिशन था। ये एक अहम रणनीतिक बेस था जिस पर काटंगा की सेनाओं का कब्जा था। इस एयरफील्ड का इस्तेमाल यूएन की जमीनी टुकड़ियों पर हवाई हमले करने के लिए किया जा रहा था। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स शांति बनाए रखने के लिए चल रहे अभियानों की सफलता पर गंभीर रूप से इसे देख रही थी और जो पीस मिशन चल रहा था वहां पे यह खतरा मंडरा रहा था। ये टास्क इंडियन एयरफोर्स की उस टुकड़ी को दिया गया जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के साथ कांगो में डेप्यूटेशन पर थे। उस दिन जिस दिन हमला होना था, बेहद खराब मौसम और दुश्मन की जबरदस्त गोलीबारी का सामना करने के बावजूद, तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट रहे गौतम पद्मनाभ गौतम ने असाधारण साहस और उड़ान कौशल का प्रदर्शन देते हुए भारी सुरक्षा वाले एयरफील्ड पर बहुत सारी बमबारी की और ये था लो फ्लाई मिशन। हमले के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक एक फोगा विमान को भी नष्ट कर दिया एयर टू एयर कॉम्बैट में।

एयर टू एयर कॉम्बैट के बाद लो फ्लाइंग मिशन था, जहां पर बहुत सारे कैनन जो हैं वो दागे जा रहे थे। जो जहाज पद्मनाभ गौतम उड़ा रहे थे वो था कैनबरा, और भारी गोलाबारी के बीच में लो फ्लाई करते हुए उन्होंने टारगेट अचीव करना था।

एक फौगा विमान जो यूनाइटेड नेशंस की जमीनी सेनाओं को लगातार परेशान कर रहा था, उसको शांत करना बहुत जरूरी था। फौगा विमान को बेकार करने के अलावा तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने जमीन पर खड़े कटंगा के तीन अन्य विमानों को भी बेकार कर दिया और एयरफील्ड पर अब निशाना साधने लगे।

दुश्मन के एयरफील्ड पर इस तरह का हमला करना जाहिर सी बात है कि नुकसान बहुत भारी है। इससे दुश्मन के ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त झटका लगा और फिर जो होना था वो हुआ, यानी दुश्मनों के हौसले जो थे वो परास्त कर दिए गए। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम को एलिजाबेथ विले के ऊपर कई और सफल उड़ानें भरने के लिए कहा गया और कटंगा की सेनाओं के साथ भीषण लड़ाई में उलझी यूनाइटेड नेशंस की जमीनी टुकड़ियों को करीबी हवाई सहायता प्रदान करने के लिए और मिशन्स दिए गए। उनके सटीक और समय पर किए गए हवाई हमलों ने जमीनी अभियानों को सफल बनाने और दुश्मन की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इन अभियानों के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने असाधारण बहादुरी, पेशेवर उत्कृष्टता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का प्रदर्शन किया और अक्सर विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया। उनके कार्यों ने यूएन सेनाओं की ऑपरेशनल सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय वायुसेना का मान बढ़ाया। दुश्मन की कार्रवाई का सामना करते हुए उनकी असाधारण बहादुरी और कर्तव्य के प्रति समर्पण के सम्मान में तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम को वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद स्क्वाड्रन लीडर और उसके बाद विंग कमांडर बनने की कहानी और उसके बाद आने वाली बड़ी चुनौतियां, क्योंकि 1961 के बाद जब भारत के लिए लड़ने के लिए उन्हें अपने मिग फाइटर्स और कैनबरा फाइटर्स उड़ाने पड़े तो वो भीषण युद्ध था। पाकिस्तान और भारत का भीषण युद्ध 1965 वॉर, जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स तब भी तैयार थी। क्या हुआ? विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के साथ जानेंगे।

दिखाई देती थी। इसी कर्तव्य भावना के कारण वो जॉइंट सर्विसेज विंग, जो आज की नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसका एक शुरुआती रूप था और तब देहरादून में स्थित थी। इस एकेडमी के तीसरे कोर्स में वो शामिल हुए। उन्होंने बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर 60वें पायलट कोर्स के हिस्से के तौर पर अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की और 1 अप्रैल 1953 को भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। अपनी शुरुआती ऑपरेशनल पोस्टिंग के दौरान उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन हलवारा से उस दौर के कुछ सबसे मशहूर फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे स्पिटफायर और वैम्पायर, ऐसे जहाज उड़ाए। बाद में वो डिसॉल्ट तूफानी एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले स्क्वाड्रन में चले गए, जिससे कई तरह के एयरक्राफ्ट पर उनके लंबे और शानदार फ्लाइंग करियर की शुरुआत हुई। उनके नेतृत्व और सिखाने की क्षमता को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने 1956 में उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल में ट्रेनिंग के लिए चुना। 1957 और 1958 के बीच उन्होंने जोधपुर में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने युवा कैडेट्स को हार्वर्ड एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग दी और अपनी सिखाने की कला और तकनीकी दक्षता को और बेहतर बनाया। 1958 में आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट यानी JBCU में खास ट्रेनिंग लेने के बाद वो कैनबरा जेट बॉम्बर पर चले गए। यहीं से बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में उनकी विशेषज्ञता की शुरुआत हुई। उनके बढ़ते अनुभव के कारण उन्हें एक इंटरनेशनल असाइनमेंट भी मिला और उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर इराक भेजा गया, जहां उन्होंने MiG-15 और MiG-17 एयरक्राफ्ट उड़ाए और इराकी वायुसेना की ट्रेनिंग और क्षमता बढ़ाने में अहम योगदान दिया। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में।

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में, महावीर चक्र से सम्मानित। 1965-1971 जंग के जांबाज, इंडियन एयरफोर्स के पायलट। इससे पहले कि हम उनकी शौर्य गाथा आगे आपको सुनाएं, एक नजर डालते हैं अपने वॉर हीरो के बचपन की। पद्मनाभ गौतम, वो तीन भाई बहनों में सबसे छोटे थे और अपने दो छोटे भाइयों अशोक और अजीत के साथ उनका गहरा लगाव था। कम उम्र से ही विंग कमांडर गौतम में एक मकसद और सेवा भाव की भावना

कहते हैं अगर एयरफोर्स में आना हो तो एक जज्बा होना चाहिए। कुछ देर पहले हमने बताया कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा थे तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम, और कांगो में स्थित यूएन पीस कीपिंग फोर्स को उन्होंने किस तरह से वायुसेना के वो मदद प्रदान की जिससे मिशंस सक्सेसफुल हुए। ट्रेनिंग, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, और उसके बाद 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग। पाकिस्तान ने विदेशी एयरक्राफ्ट्स लेकर, टैंक्स लेकर एक चुनौती पेश करनी चाहिए हिंदुस्तान के खिलाफ। इंडियन एयरफोर्स के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे पायलट्स रात दिन रेनक मिशन्स में जाने

एक समय था जब भारत दोस्ती का हाथ विश्व भर में हर देश के साथ दोस्ती का वो प्रस्ताव लेकर जाता था। कई जगह ये सोचा गया कि भारत कमजोर देश है, इसलिए शायद दोस्ती करना चाह रहा है। लेकिन जिसने भी भारत से दोस्ती की, भारत का हाथ पकड़ के उस देश को मालूम पड़ा

कि इस हाथ में बहुत ताकत है और केवल ताकतवर इंसान ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर वो दोस्ती वाला हाथ मुट्ठी में बदल गया तो देश की ताकत, देश की असली ताकत वो सबके सामने आ जाएगी। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की बात हम कर रहे हैं और उनके शौर्य की गाथा गाते हुए हम 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई की तरफ चलते हैं। स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर वो आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट में वापस आ गए थे जब लड़ाई शुरू होने के आसार थे। तब वो कमांडिंग ऑफिसर थे और उनकी शानदार लीडरशिप में JBCU यानी जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट ने, जो असल में एक ट्रेनिंग यूनिट थी, लड़ाई में एक फ्रंट लाइन ऑपरेशनल स्क्वाड्रन की तरह जोश और प्रोफेशनलिज्म के साथ हिस्सा लिया। यूनिट ने डीप पेनिट्रेशन बॉम्बिंग मिशन और सटीक टारगेट मार्किंग जैसे कामों में खुद को साबित किया। पाकिस्तान के पास उस समय सेबर जेट्स थे जिसके गुणगान वो गाया करता था, लेकिन विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम ने और उनकी टीम ने ऐसे काम किए जो बहुत ज्यादा हुनर और हिम्मत की जरूरत मांगते थे। उन्होंने खुद आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में कई साहसी उड़ानें भरी, रिकॉनोसेंस मिशन या फिर अटैकिंग मिशंस। ऐसे काम करने के लिए एक खास आत्मविश्वास और सटीकता की जरूरत थी, लेकिन पद्मनाभ गौतम ने ऐसे मिशंस किए जो बहुत असरदार थे। कहते हैं कि उनके मिशन इतने असरदार थे कि पाकिस्तान की मिलिट्री इतिहासकार भी उनकी बहादुरी और असरदार काम को अनमने ढंग से ही सही लेकिन सम्मान के साथ मानते थे। 1965 वॉर के ऑपरेशन के दौरान उनकी निडर लीडरशिप और जबरदस्त बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

एक ऐसा मिशन जो सिर्फ कैनबरा के जहाज ही कर सकते थे। कहते हैं भारत के पास उस समय कैनबरा के जहाज थे जो एक बहुत ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के ठिकानों की रिकॉनोसा मिशन में फोटोग्राफी करके यहां अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी मददगार साबित होते थे। मिशन्स तो लो फ्लाइंग बॉम्बिंग के लिए भी पद्मनाभ गौतम ने किए हैं।

भारत के बहुत सारे अटैक्स रात में किए जाते थे, और रात में अटैक करना प्रिसिजन यानी सटीकता मांगते थे। सेबर सुपरसोनिक जहाज थे जिनका सामना इंडियन एयरफोर्स को करना था, और हर बार कोई ना कोई नया प्लान बनाकर इंडियन एयरफोर्स

1965 और वो एक ऐसा दौर जहां हम में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे। पैटर्न टैंक और सेबर जेट का डर दिखाकर वो प्रेशर बनाने की कोशिश नाकाम रही। इंडियन एयरफोर्स के नैट फाइटर्स सुपरसोनिक साबर को चुनौती देने के लिए एक हाई ऑल्टीट्यूड में रात के अंधेरे में घूमते रहते थे, और जब भी सेबर जेट सरहद पार करके हमारे देश की तरफ आते थे तो उस हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे उतरते हुए एक एक्स्ट्रा स्पीड गेन करते हुए वो फायर करते थे। और वैसे ही कैनबरा और मिंग्स इस सुपरसोनिक जहाज का सामना करके उसे नष्ट कर रहे थे। ग्राउंड पर वॉर चल रही थी जहां इंडियन आर्मी एक बहुत घातक युद्ध लड़ रही थी। असल उत्तर का वो बैटलफील्ड जहां की रिकॉनसॉन्स मिशन में इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन के इलाके में जाकर उनकी पोजीशंस का सही ब्यौरा दिया। एक ऐसा बैटल जहां खून की होली खेली गई। ये खून की होली जमीन पर खेली गई थी जहां हमारे बहुत सारे जाबाज सिपाही डटे रहे। गोलियां चलती रहीं और वो गोलियों को सीने पर लेते रहे, लेकिन मजाल है कि एक इंच भी उनका पैर पीछे पड़ा हो। वो दौर भीषण युद्ध का दौर था। भारत ने उस चुनौती को सामना किया और इंडियन एयरफोर्स ने जहां जहां हो सका वहां मदद पहुंचाई।

आज हम संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 की लड़ाई के इंडियन एयरफोर्स के हीरो, साथ ही साथ 1965 में शहीद हुए उन सैनिकों को भी याद करते हैं आज यहीं पर। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की जन्मतिथि है, इसलिए विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में उनको समर्पित है।

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम याद कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को, महावीर चक्र से सम्मानित। और हमने बताया कि किस तरीके से 1965 के युद्ध में भी जेट बॉम्बर कन्वर्शन यूनिट को कमांड कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर, लेकिन आगे चल के उनका इंतजार कर रही थी 1971 की भारत पाकिस्तान की एक और जंग। उस समय वो विंग कमांडर गोरखपुर से ऑपरेट करने वाले 16 स्क्वाड्रन की कमान संभाल रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम बन गए। स्क्वाड्रन ने पूर्वी मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई, जहां भारतीय सेना ने बहुत तेजी से और निर्णायक जीत हासिल की। उनकी लीडरशिप में 16 स्क्वाड्रन ने दुश्मन के इलाके में बहुत जोखिम वाले बॉम्बिंग मिशन पूरे किए, जिससे पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। रणनीतिक सटीकता और हिम्मत के साथ किए गए इन साहसी ऑपरेशन ने युद्ध में भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। 1971 की लड़ाई के दौरान उनकी बेहतरीन सेवा और बेमिसाल बहादुरी के लिए विंग कमांडर गौतम को उनके महावीर चक्र के साथ बार से सम्मानित किया गया। वे भारतीय वायुसेना के इतिहास में यह दुर्लभ सम्मान पाने वाले केवल 2 अधिकारियों में से एक बने। युद्ध के बाद 1972 की शुरुआत में विंग कमांडर गौतम को एयरफोर्स स्टेशन पूना, जो अब लोहेगांव के नाम से जाना जाता है, ऑफिसर इंचार्ज फ्लाइंग के तौर पर तैनात किया गया। 25 नवंबर 1972 को MiG-21 में एक रूटीन उड़ान के दौरान एक दुखद घटना घटी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान

संदेश टू सोल्जर्स में आज हमने आप सबको रूबरू कराया विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, महावीर चक्र से सम्मानित भारत के जांबाज पायलट से। 16 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स की, और आज उनकी जन्मतिथि है, इसीलिए आज का संदेश टू सोल्जर्स समर्पित किया हमने विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को। आशा करते हैं आकाशवाणी की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। ये कहानी हमने इसलिए सुनाई क्योंकि याद है ना वो अल्फाज, तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: अभी आप दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1335वीं कड़ी।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गाँव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की, आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं।
4: भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है।
2: तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओ, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है, तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
3: श्रोताओ, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
3: इसकी पंखुड़ियां तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
2: जी।
3: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
2: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
3: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा,

0: ये संकेत हिंसा का नहीं है लेकिन सुरक्षा का है।
1: जी
0: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी।
1: जी
0: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
1: कैलपौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है क्योंकि वे भी खेतीबाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
0: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
1: कैलपौध उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
0: श्रोताओं, कैलपौध उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
1: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है जहाँ हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपौध उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपौध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कैलपौध उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपौध शब्द का क्या अर्थ है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
0: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
4: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ।
3: और तुम? मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
3: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए, हैं? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
4: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से

0: पाता, तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
1: भाई वाह।
0: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
1: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
0: अच्छा,
1: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
0: वाह,
1: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
0: हाँ, ये तो है।
2: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रही थी। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
1: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
0: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
1: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
0: है? वो कैसे?
1: अरे भाई, मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
0: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
1: वो कैसे?
0: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाए। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
1: भाई वाह।
2: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
1: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
0: ये तो है। अरे चढ़ते रहो, चढ़ते रहो।
3: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो पहुंचे तो सही।
0: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
1: हैं?
0: हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
3: मैं क्योटो देखूंगा
0: और मैं ओसाका।
3: क्यों नहीं, चलो
0: चलो।
2: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
1: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
0: चलो
1: संभल कर।
0: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
3: बचे।
2: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
1: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
0: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
3: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था।
0: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था।

0: क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
1: हाँ हाँ चलो।
2: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
3: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है
4: जी।
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
4: बाजी आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है?
3: नमक, लाहौरी नमक।
4: लाहौरी नमक, आप इसका क्या करेंगे?
3: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास।

0: सिरक। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है? नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या?
1: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये।
0: हैं?
1: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
0: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
1: मेरी माँ? बाजी, हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है?
0: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
1: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
0: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
1: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। आप कानून तो जानती नहीं।
0: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
1: ओहो बाजी, आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
0: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
1: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है?
0: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूं। इस बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इनकी टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ ये ठीक रहेगा।
1: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
0: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
1: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
0: नमक का मोल पूछने।
2: आइए आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है।
0: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
2: जी, फरमाइए।
0: अब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।

0: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी। वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
1: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
0: जी, ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
1: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
0: जी, शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप
2: लीजिए जनाब,
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा हाफिज़।
1: आप भी इधर आइए, आइए सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ
3: इधर आइए
0: जी।
4: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
4: माफ कीजिए, चाय पिएंगे क्या आप?
0: नहीं।
4: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें जी। हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
4: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है, किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है, दिल में।
0: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
4: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
0: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1335वीं कड़ी सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है 11:30। अब प्रस्तुत है निकोबारी कार्यक्रम।

Nen, Lul, Fan, Talin, Afun, Ko, Nen, Lul, Fan, Talin, Afun.

More beer, more beer, more beer.

ngamana tin ka ga angine ti ka Lucas Robert tamihulo aurika.

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
1: మీడియం వేవ్ 438.6 మీటర్లు అనగా 600

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। अब अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोना वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित हुई। दोपहर 12 बजे दोनों सदनों के फिर से शुरू होने पर विपक्षी दलों ने सदन को सुचारू रूप से न चलने दिया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 11 बजे तक और राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पटियाला जिला कार्यालय के एक प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा है कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है, जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 248 अंक गिरकर 76,143 पर, जबकि निफ्टी 75 अंक गिरकर 23,795 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बर्ब समय से खेलेंगी। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: अब सुनिए रानी रूपलता को।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 1:30 हुए हैं। अब श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

कुछ नगमे दिल के करीब होते हैं, कुछ नगमे किसी खास की याद दिलाते हैं, और जब वही नगमा किसी अपने के नाम हो तो बात ही कुछ और होती है। इन्हीं खूबसूरत फरमाइशों के साथ स्वागत है आपका कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में। चलिए देर ना करते हुए पढ़ते हैं आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे भेजा है अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, प्रणय कुमारी प्रसिद्धि और हीरामन शिंदे। हमारे ये श्रोतागण सुनना चाहते हैं फिल्म प्यासा सावन का ये खूबसूरत संगीत।

मुकेश की आवाज़ में अब फिल्म उपकार का अगला गीत सुनिए। इस गीत को पसंद किया है राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान ने।

नेपानगर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं हमारे श्रोता सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला शाह और राजेंद्र शाह, जिनकी पसंद है फिल्म शोर का ये गीत। आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गाना।

कार्यक्रम का अंतिम फरमाइशी गीत हमने लिया है फिल्म पत्थर के सनम के इस खूबसूरत गीत से। सुनने वाले श्रोतागण हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही समाप्त होता है कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही पलों के बाद मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: दिनांक 26 जुलाई 2026

0: 20 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धा पूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
1: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरण उत्सव है।
2: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
1: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है, जो गलत है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
3: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और

0: सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार निवेश

0: को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
1: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वावथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अतः मछुआरों को 27 जुलाई तक समुद्र में न जाने के लिए सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय

बजकर 32 मिनट हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। हेलो डियर फ्रेंड्स,

0: मुस्कुराहटों की सौगात लेकर, गीतों की बरसात लेकर फिर हाजिर है आपकी अपनी महफिल में कुछ बातों और ढेर सारी फरमाइशों के साथ कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे श्रोताओं से और बात करते हैं आज के पहले कॉलर से। हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड मैडम,
0: नमस्ते। आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: इंदौर से अनिल कौशल
0: जी। अनिल जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: बस इस समय बैंक में है, वहीं से आपसे बात कर रहे
0: हैं। जी, और बताइए कामकाज कैसा चल रहा है आपका?
1: कामकाज अच्छा चल रहा है, यहाँ इंदौर का मौसम काफी सुहाना हो रहा है, करीब करीब 15-16 इंच बारिश हो चुकी है इंदौर।
0: जी, तो और बताइए इस वक्त अभी क्या कर रहे थे आप?
1: बस अभी लंच टाइम में था, जैसे आपको पता ही है हमारा है ना।
0: जी,
1: लंच टाइम में था, लंच के टाइम में थोड़ी देर बाहर निकले थे, तो उससे मैं बस आपसे बात हो रही है।
0: जी, तो हमारे कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप?
1: जी जी बिल्कुल, कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार भी रहता है, और आप लोग अच्छे तरीके से श्रोताओं को अटेंड करते हैं, उसको प्रशंसा कम है।
0: जी अनिल जी, तो बताइए आपका पसंदीदा वो कौन सा गीत है जो आज आप सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है जीरो, आवाजें है लता मंगेशकर और मनोहर दास की, और गीत को प्यार करने में पसंद करते हैं।
0: जी, बहुत ही प्यारा गीत चुना है आपने। तो ये गीत आप किन दोस्तों को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: हम आपके साथ और आकाशवाणी विजयपुरम की पूरी टीम के साथ सुनना चाहेंगे।
0: तो अनिल जी चलिए सुनवाते हैं आपको हीरो फिल्म का ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। बहुत
0: जी।

0: चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो
0: हेलो हेलो डियर फ्रेंड
1: जी मैम।
0: जी, नमस्कार। आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम मैं बात कर रहा हूँ
0: जी,
1: श्री
0: कौन बार
1: विजयपुरम
0: बोलिए
1: से।
0: आपका नाम?
1: मैं डेयरी फार्म श्री विजयपुरम से आदर्श बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी आदर्श जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद मैम।
0: जी बताइए अपने बारे में कुछ, क्या करते हैं आप?
1: मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ ट्रैवल इंडस्ट्री।
0: जी, तो कामकाज के बाद जब आपको थोड़ा समय मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, तो आप क्या करते हैं? हेलो
1: मैडम मेरे हॉबी
0: हेलो श्रोताओं, उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। चलिए कोई बात नहीं, सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: नमस्कार, जय जगन्नाथ।
0: नमस्कार, जय जगन्नाथ जी। अपना परिचय दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल मैम जी, मैं त्रिपुरा से आशुतोष जगन्नाथ बोल रहा हूँ।
0: आशुतोष जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: अच्छा है मैम
0: जी।
1: और आज तो उल्टा रथ है। उल्टा रथ का पूजा धूमधाम से हर जगह में मनाया जा रहा है। मैं प्रसाद खा के आज घर लिखा हूँ।
0: जी जी जी और बताइए इस वक्त क्या हो रहा है वहाँ पर?
1: वहाँ पर तो मैम जी अभी रथ का ही सब आनंद ले रहे हैं।
0: जी।
1: और आज का मौसम भी ठीक ठाक है, बारिश नहीं है, काफी धूप है
0: जी। तो चलिए बताइए आज आप कौन सा गीत सुनेंगे?
1: तो आज इस शुभ दिन में मैं एक देवी गाना सुनना चाहता हूँ। 1972 में रिलीज हुआ, उसका नाम है आमर प्रेम और गाने का बोल है बड़ा नटखट है ये, कृष्ण की नहीं लता जी ने गाया है।
0: जी जी लता मंगेशकर जी ने गाया है,
1: और
0: बहुत ही खूबसूरत गीत है।
1: गाने को लिखा है संगीत का सबसे बड़ा भाई आनंद बख्शी जी ने,
0: जी आनंद बख्शी साहब ने।
1: और आदि बर्मन जी ने शिष्य सजाई।
0: जी आशुतोष जी, आप तो हमेशा पूरी जानकारी के साथ आते हैं कार्यक्रम में।
1: तो मैं देखिए मैम जी, उन लोगों को तो कभी कभी याद करना चाहिए मैम जी। उन
0: गाना
1: लोगों का दौलत
0: जी।
1: हम लोग गाना सुनने को मिलता है हमको।
0: तो आप किस तरह के गाना सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, नए या पुराने?
1: मैं तो मैम जी हमेशा पुराना गाना गाना ज्यादा पसंद करता हूँ।
0: जी
1: तो आपने जब जब आते हैं आपको तो मालूम है हर एक टाइम में पुराना गाना फरमाइश करता हूँ।
0: जी सारे
1: और
0: ही गाने अच्छे होते हैं, सारे जमाने के, सबके अपने अपने पसंद है। जी
1: वो तो है ही मैम जी। और देखिए मैम जी, ये पुराना जमाने का गाना ऐसा लग रहा है कि अभी भी नया है।
0: जी
1: और नया जमाने का गाना कुछ दिन बाद लोग भूल जाता है मैम जी।
0: जी
1: और मैम जी आपका इजाजत हो तो मैं दो चार बच्चों को याद करता हूँ।
0: जी बोलिए।
1: पहले मैम जी आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी धन्यवाद।
1: और दिल्ली से धर्मवीर जी और विजयपुरम पूर्णिमा दीदी, सप्तमी विष्णु दीदी और मोनिका दीदी, और मध्य प्रदेश से गजराज लदी लदी जी, और आदरणीय भगवान सिंह परमार, राम बाबू शर्मा, कृष्ण सिंह राजपूत, नरेश रमेश प्रजापति और प्रेम सिंह भैया, और त्रिपुरा से मेरा छोटा भैया अभित तेली, मेरे धर्म पत्नी संगीता देवनाथ, और प्रेम जी चक्रवर्ती जी आसाम से, और नेटवर्क के सारे श्रोताओं को सुनना चाहती हूँ।
0: जी तो अपने सारे दोस्तों के साथ सुनिए ये प्यारा सा गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।

0: हेलो डियर फ्रेंड,
1: जी नमस्कार जी जी
0: नमस्कार जी। जगदीश जी से बात हो रही है मेरी?
1: जी जगदीश धाकर नाइमा ठेंगड़ी
0: जी,
1: आलोट रतलाम मध्य प्रदेश।
0: मध्य प्रदेश से जी। और बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी मैं किराना स्टोर चलाता हूँ और खेती भी है मेरे,
0: जी।
1: दोनों काम साथ में चलता है।
0: तो इस वक्त हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं आप?
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ ना, फोन लगाया मैंने,
0: जी, तो जगदीश
1: बात हो
0: जी।
1: रही है आपसे।
0: और बताइए, इतने कामकाज में हम सब तो आजकल इतने बिजी रहते हैं, तो आप बताइए कि इस बीच अपने लिए थोड़ा समय निकालना या परिवारजनों के लिए समय देना कितना ज़रूरी है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: सब हैंडल करना पड़ता है ना, देखना पड़ता है, रेडियो भी सुनते हैं,
0: जी।
1: चलता रहता है रेडियो तो मेरा मोबाइल ऐप के माध्यम से जी, सब भी सुनते हैं परिवार वाले। हाँ
0: जी। तो जगदीश जी बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मूवी का नाम है अलग अलग, दिल में आग लगाए,
0: जी, आपने
1: पवन
0: मूवी
1: कंवल।
0: देखी है?
1: हाँ बिल्कुल, देखिए ना, राजेश कंवल मूवी है।
0: जी। तो और बताइए, ये गाना आज आप किसे डेडिकेट करने चाहिए?

0: सकेंगे?
1: जी, हमारी मैडम है श्रीमती रंजू भाई दाता, और हमारा एक लड़का है युवराज, और बेटी है शिवांगी दाता।
0: जी, तो जगदीश जी अपने पूरे परिवार वालों के साथ सुनिए अलग अलग फिल्म का ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया जी, नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
4: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
3: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
4: सच?
3: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
4: समझ गया।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
4: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
3: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
4: सच?
3: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
4: समझ गया।

0: हेलो डियर फ्रेंड। हेलो
1: हेलो डियर फ्रेंड,
0: जी, अपना
1: गुड
0: नाम
1: आफ्टरनून।
0: बताइए।
1: मैं प्रेमजी चक्रवर्ती बोल रहा हूँ, आशा उठी।
0: जी प्रमोजी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
0: जी बताइए, इस वक्त क्या कर रहे थे आप?
1: अभी तो मेरा घर में आज पूजा पाठ चल रहा है, भगवान श्री विष्णु जी को पूजा कर रहा हूँ। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा अच्छा दोस्त अनुप जी को मैंने निमंत्रण दिया,
0: जी।
1: अनुप जी को आ रहा है मेरा
0: चलिए,
1: घर
0: बहुत अच्छी बात है।
1: में। और
0: बताइए फिर, आज के दिन आप कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज मैं गाना सुना चाहता हूँ, जिनका नाम है क्या यही प्यार था है। और बाबू सुखदेव जी और कलका
0: अलका
1: याग्निक जी
0: याग्निक
1: की आवाज
0: जी।
1: में, युगल आवाज में गाना सुना दीजिए। और काफी दिनों को बाद आपको साथ बात कर रहा हूँ। आप शिवानी मैम है ना?
0: जी
1: आप तो बहुत अच्छा बात कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है, लग रहा है मैडम।
0: जी धन्यवाद। हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता हमसे जुड़ते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपने पसंदीदा गीत सुनते हैं। हमें भी अच्छा लगता है।
1: जी,
0: जी
1: और आकाशवाणी तो हमारा दिल है ना?
0: जी
1: आकाशवाणी हमारा दिल है, और आकाशवाणी से हमारा बहुत कुछ मिलना है, शिक्षा मिलना है, चेतना मिलना है, और विनोदन मिलना है। और बहुत अच्छा लग रहा है, आकाशवाणी को मैं हमेशा सुन रहा हूँ। आकाशवाणी की विजयपुरम जो कार्यक्रम है ना, सब सबको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है।
0: जी, कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं आप?
1: मैं युगवाणी कार्यक्रम सुनता हूँ और फोन इन कार्यक्रम सुनता हूँ।
0: जी
1: और मैं मैडम,
0: जी
1: मैं दो चार मित्रों को नाम लेना चाहता हूँ मैडम, आप
0: जी
1: अनुमति दीजिए नाम
0: जी
1: मैडम
0: जी
1: आप
0: जरूर, नाम
1: मेरे
0: ले
1: को।
0: लीजिए दोस्तों का। जी
1: तो पहले तो मेरा दोस्त अनुप कुमार भट्टाचार्य जी और आशुतोष देवनाथ जी त्रिपुरा से, और अविनाश तेली जी और दिल्ली से बहुत अच्छा श्रोता है, उनका नाम है धर्मवीर प्रजापति जी। और भगवान सिंह फरमाड़ जी सुनेंगे, और सप्तमी विष्णु कुंडू जी, सतभा भट्टाचार्य जी, संगीता देवनाथ जी और वरुण जी सुनेंगे। और प्रथम और गुलाघाट और पड़ा होंगे वो हमारे आदरणीय दादा रमेश पात्र डांगरिया। ठीक
0: जी, तो आपका गाना हमें मिल चुका है प्रेमोजी जी, आइए सुनते हैं हमें।
1: है मैडम, ठीक
0: जी
1: है,
0: सुन
1: आप अच्छा रहे, आपको नमस्कार, धन्यवाद, थैंक
0: जी,
1: यू सो
0: नमस्कार।
1: मच, बाय बाय, बाय बाय।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डी, नमस्कार। ग्राम
0: नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
1: कटनी खेड़ी जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैं, राम नरेश।
0: राम नरेश जी, बहुत बहुत
1: हाँ
0: स्वागत है आपका
1: जी,
0: जी। बताइए क्या कर रहे थे इस वक्त आप।
1: अभी तो बाजार आए थे। और
0: वैसे क्या
1: बाजार
0: करते हैं आप, क्या कामकाज है आपका।
1: मैं कृषक हूँ
0: जी।
1: जी, कृषक हूँ।
0: तो अभी
1: हाँ,
0: इस समय वहाँ खेती में कुछ कोई काम चल रहा है क्या।
1: इस खरीफ की फसल की बुआई हो गई है, मक्का इस तरह की फसल लगाई जाती है।
0: जी जी
1: हाँ
0: जी चलिए अच्छी बात है।
1: जी, और आज के कार्यक्रम में घातक फिल्म का गीत है, निगाहों
0: घातक फिल्म का गीत सुनेंगे, कौन सा गीत।
1: ने सुरेश वाडकर साथ में करवा।
0: जी, सुरेश वाडकर जी और साधना सरगम जी ने गाया ये गीत।
1: जी,
0: तो चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।
1: हाँ जी, नमस्कार। मैं
0: नमस्कार।

0: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम
0: गुड आफ्टरनून जी। आपका नाम कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: जी। मेरा नाम सांत्वना बारे जी, बेगम डोलीगंज से बोल रही हूँ
0: जी बताइए, क्या
1: जी। मैडम
0: कैसी
1: आप
0: हैं आप?
1: कैसी हो?
0: जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं तो बढ़िया हूँ
0: जी तो बताइए अपने बारे में, क्या करती हैं आप?
1: बस। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, घर में रहती हूँ।
0: जी
1: और आपका रेडियो में जितना प्रोग्राम आता है जितना सुन सकती हूँ
0: जी
1: सब सुन लेती हूँ। खास करके तो आपका जो हेलो डियर फ्रेंड्स रहता है ये तो बराबर तो सुनना ही सुनना।
0: जी तो हमारे सारे कार्यक्रम सुनते हैं आप, खास करके फोन इन कार्यक्रम।
1: जी
0: जी
1: हाँ जी।
0: तो और बताइए, आपके घर पे और कौन कौन है?
1: मेरे घर पे मेरा हस्बैंड है और बच्चे लोग हैं।
0: जी तो अभी इस वक्त सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके साथ?
1: हाँ जी हाँ जी मैडम।
0: जी तो
1: मैं तो
0: बताइए।
1: खाना मैं तो दिन को लंच करके जल्दी जल्दी बैठ गई आपको कार्यक्रम सुन रही हूँ। मेरा कल कब आएंगे करके बस इंतजार कर रही हूँ,
0: जी देखिए, आपने
1: तो
0: इंतजार किया,
1: इंतजार
0: हमें
1: करते
0: कॉल कर।
1: करते
0: जी
1: आएगी आप कल।
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनेंगी?
1: आज मैं दिल का रिश्ता, फिल्म का नाम है और
0: जी
1: बोल
0: ठीक।
1: है हाय दिल
0: हाय दिल।
1: हाय दिल।
0: जी जी
1: ये गाना मैं आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: जी धन्यवाद।
1: और जितना मेरा भाई बहन इस वक्त सुन रहे हैं सबका साथ मिलकर ये गाना सुनना पसंद करूंगी और मेरा
0: जी
1: परिवार का साथ।
0: जी बहुत ही खूबसूरत गीत चुना है आपने, तो चलिए
1: जी
0: अपने साथ
1: जी जी
0: दोस्तों
1: मैडम,
0: फैमिली वालों के
1: मेरे को
0: साथ
1: कॉल करने के
0: सुनते हैं।
1: लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।
1: ओके।

तो श्रोताओं, आज का सफर बस यहीं तक। आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी दोस्तों का धन्यवाद। अब अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। इसी उम्मीद के साथ मैं शिबानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। 3:30 हुए हैं। अब आपके लिए बोलते नगमों का कार्यक्रम, यूं ही गाते रहो।

कार्यक्रम यूं ही गाते रहूं में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है। कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी थोड़े मुश्किल, लेकिन जो हर पल को मुस्कुराकर जीना सीख ले, उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है।

दोस्तों, हर सफ़र में कभी ना कभी ऐसे मोड़ ज़रूर आते हैं जहां हिम्मत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो कदम रोकने के बजाय आगे बढ़ना चुनते हैं। उम्मीद की रोशनी हमें हर मुश्किल से पार ले जाती है।

दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर हमारी ज़िंदगी से मुस्कुराहट ही गायब हो जाए तो हर दिन कितना फीका सा लगने लगेगा। मुस्कुराना सिर्फ खुश होने की निशानी नहीं है बल्कि यह ज़िंदगी को सकारात्मक नज़रिए से जीने का सबसे खूबसूरत अंदाज़ है। इसीलिए कहते हैं, मुस्कुराने के लिए किसी बड़ी वजह का इंतज़ार मत कीजिए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी भी उन्हीं पलों से खूबसूरत बनती है।

दोस्तों, कहते हैं कि प्यार ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत भावनाओं में से एक है। या कब, कहाँ और कैसे किसी के जीवन में दस्तक दे दे, इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं होता। इसके आने से सिर्फ रिश्ते नहीं बनते, बल्कि जीने का नज़रिया भी बदलने लगता है।

मंजिल अलग है और कहानी भी अलग है। इसीलिए मंजिल की जल्दी से ज़्यादा सफ़र की खूबसूरत को महसूस कीजिए, क्योंकि अक्सर रास्ते ही हमें वह सिखा जाते हैं जो मंजिल कभी नहीं सिखा पाती।

दोस्तों, खुशी बांटने से बढ़ती है। जब हम दूसरों को खुश देखते हैं या उनके दुख में साथ खड़े होते हैं तो हमारे मन को भी सुकून मिलता है, और यही इंसानियत की पहचान है। खुशी केवल पाने पाने में नहीं बल्कि देने में भी होती है।

0: 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजे हैं, अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।
1: आप सुन रही हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं EISSMS पुणे।
2: अपने सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3 लाख से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशन्स के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org।
3: इस श्रृंखला में आज सुनिए रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। सपनों की नगरी मुंबई, यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए भागते हैं, तो कुछ खुद को भूलकर कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए उन्हें निभाने के लिए अपनी जिंदगी भी भूलकर जीते हैं। सुधा भी उनमें से ही एक है। भाई के जन्म के समय माँ दुनिया छोड़ गई और तभी से सुधा के नन्हे कंधों पर छोटे भाई बहन और घर की जिम्मेदारी लद गई। कंधे बड़े होते गए और उसके साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ चला। सुबह जल्दी उठकर पिता की सेहत, उनकी खत्म होती दवाइयों की चिंता करते हुए बाहर से पानी भरना, रसोई में खाने की तैयारी, भाई बहन को जगाकर स्कूल के लिए तैयार करना और इसी बीच खुद भी ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलना उसका रोज का काम था। भागते दौड़ते ही कुछ खा लिया तो भला, नहीं तो ना सही। इन कामों के बीच समय को पकड़कर रखना उसका सबसे मुश्किल काम होता, क्योंकि कुछ भी करती लेकिन समय उसकी पकड़ में ही ना आता और वो रोज ऑफिस में लेट होकर डांट खाती। सुधा भी क्या करती, समय पर निकलने की कोशिश धरी ही रह जाती। वो बस खुद से यही कहती कि एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन एक रोज जब वो मुंबई की भारी बारिश में भीगते हुए किसी तरह ऑफिस पहुंची तो मैनेजर ने उसके हाथों से फाइल लेकर सीधे शब्दों में उसे कहा, मिस सुधा, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हमें आपके जैसे लोग नहीं चाहिए। सुधा कुछ पल के लिए खड़ी रह

आंखों से आंसू बहने ही वाले थे कि वो चुपचाप ऑफिस से निकल गई। आसमान में बादल गरज रहे थे और उसके मन में भी लाखों सवालों की गरज जारी थी कि अब सब कैसे होगा। तेज बरसती बारिश उसकी आंसुओं को भी बहाती ले जा रही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम आज इस बारिश के कारण उसे आंसू छुपाने की जरूरत तो नहीं पड़ी।

0: ये गीत सुधा को पसंद था क्योंकि नायक मरने को जीने से बेहतर बताता है। लेकिन ये बात कहते हुए वो बहुत सकारात्मक ही नजर आता है क्योंकि वो भी जीवन ही चुनता है। सच भी है, जीना कोई आसान काम थोड़ी है। अगले कुछ दिनों तक सुधा नौकरी की तलाश में यहां से वहां ठोकरें खाती रही। अब नौकरी जल्द पाना जरूरी था क्योंकि पापा की पेंशन तो उनके इलाज के लिए ही कम पड़ती थी। उस पर भाई बहन की फीस और घर के बाकी खर्चे भी सिर बाए खड़े रहते। नौकरी ढूंढने की इस कवायद में एक शाम सुधा बहुत थक गई तो मरीन ड्राइव पर जाकर बैठ गई। सामने उफनता समुद्र था और डूबता हुआ सूरज, हवा में हल्की नमी थी और उसके मन में ढेरों सवाल। थोड़ी देर चुप बैठकर वो सामने ताकती रही, फिर धीमे से उसने कहा, भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है। उस रोज खुद को संभाल कर जब वो घर पहुंची तब भी उसकी मायूसी परिवार से छुपी नहीं थी। उसे छोटे भाई सौरभ ने हाथ में चाय पकड़ाकर कहा, दीदी आप चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। छोटी बहन सरला ने गले लगाकर कहा, दीदी आप सबसे स्ट्रांग हो। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हिम्मत मत हारना। परिवार का ये साथ भी क्या कम था। अगली सुबह एक उम्मीद लिए आई। फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सुधा ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक शांत आवाज आई, मिस सुधा
1: जी।
0: मैं चंदन बोल रहा हूं, हमारी कंपनी में आपने

के लिए अप्लाई किया था। आप आज आकर ऑफिस में मिलिए, मैं आपके नंबर पर एड्रेस भेज रहा हूँ। सुधा को जैसे यकीन नहीं हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो, आप सुन रही हैं ना? आज आप कितने बजे आएंगी? जी जी हाँ, मैं 2 बजे आकर मिलती हूँ। थैंक यू। सुधा ने फोन रख दिया। कुछ सेकंड वो बस खड़ी रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई जो काफी दिनों से गायब थी। वो दौड़ती हुई अंदर गई। पापा, मुझे नौकरी मिल गई। छोटे भाई बहन उछल पड़े, पिता की आंखें भर आई और घर में बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ। उस दिन सुधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया है।

सुधा को नौकरी मिल गई और एक बार फिर वही सब जद्दोजहद शुरू हो गई। वो एक बड़ी कॉरपोरेट फर्म थी जहां हर चीज समय और अनुशासन पर चलती थी। वहां देर से आना सिर्फ गलती नहीं माना जाता था बल्कि लापरवाही समझा जाता था। पहले हफ्ते ही सुधा को यह समझ आ गया था, पर वो भी क्या करती, जैसे पूरी कायनात उसे लेट करवाने पर तुली रहती। कभी जल्दी निकल जाए तो भाई बहन के स्कूल से कोई कॉल आ जाता, या कभी पिता की तबीयत का कुछ ऐसा हाल होता कि उसे देर हो ही जाती। सुधा का बॉस रमेश का स्वभाव बाकी मैनेजर्स जैसा सख्त तो नहीं था, लेकिन वह अनुशासन को लेकर बहुत स्पष्ट था। बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कहता था वो सीधा और साफ होता था। एक दिन मीटिंग के दौरान जब सुधा थोड़ी देर से पहुंची तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। वो हल्का सा झेपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुधा थोड़ी घबराई हुई अंदर गई। रमेश अपनी फाइलों से नजर उठाकर उसे देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, आप देर से क्यों आती हैं मिस सुधा? सुधा ने सिर झुका लिया। सर, घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी समय पर निकल नहीं पाती। रमेश ने कोई प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी, बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कंपनी के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं? ये सुनकर सुधा के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूं सर। रमेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, कोशिश काफी नहीं होती मिस सुधा, नतीजे चाहिए होते हैं। सुधा कुछ नहीं बोल सकी, वो चुपचाप सिर झुकाए बाहर निकल गई। उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी ताकि वो समय पर पहुंचा करे। उसने घर के काम को रात में ही पूरा करने की ठान ली। ऐसा करते करते एक दिन सुधा के उठने का समय हो गया और वो सोने की बजाय काम में ही लग गई। वो ऑफिस भी समय से पहुंच गई। आराम न करने के कारण उसकी हालत जरा खराब होने लगी, पर वो ऑफिस का काम पूरा करती रही। जब ऑफिस की छुट्टी हुई और सुधा बाहर निकली तो उसे अचानक चक्कर आ गया और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए रमेश की नजर उस पर पड़ी तो सुधा का हाल जानने उसकी ओर बढ़ गया। सुधा को ध्यान से देखते हुए रमेश ने पूछा, मिस सुधा, आप ठीक हैं? सुधा आवाज सुनकर अचानक उठने की कोशिश करते हुए बोली, जी सर, लेकिन चक्कर के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और लड़खड़ा गई। रमेश ने उसे संभालते हुए कहा, अरे संभलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं सर, मैं बस थोड़ी देर बैठ के चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आप चलिए। रमेश ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और दोनों ने सुधा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। सुधा ये मदद लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ सोचने या कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ ही देर में रमेश और सुधा डॉक्टर के सामने थे। सुधा की नब्ज देखते हुए डॉक्टर ने पूछा, ठीक से सोती हैं? जी। कितने घंटे? 3-4 बस। और बीती रात? नहीं सो पाई। क्यों, कुछ परेशानी है? सुधा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रमेश समझ गया कि ऑफिस समय से पहुंचने के कारण ही ये नींद नहीं ली गई है। डॉक्टर ने ज्यादा सलाह और कम दवाइयों के साथ उन्हें रवाना किया। रमेश ने बाहर आते ही सुधा से कहा, मिस सुधा, आपको कल आने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं समय से आया करूंगी, आप काम से मत निकालिए। सुधा बेचैन सी उठी। मिस सुधा, आपको सेहत ठीक करने के लिए कल की छुट्टी दी जा रही है, आगे आपको आना है और पूरी कोशिश करना है कि समय पर आना है, लेकिन ऐसे भी नहीं आना है कि अगले दिन छुट्टी ही देनी पड़े। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, ड्राइवर आपको घर छोड़ देंगे। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, आपने इतना किया ये भी बहुत है। कहकर सुधा जाने को हुई कि रमेश ने पास से गुजरते एक ऑटो को रोककर सुधा को उसमें बैठने के लिए कहा। सुधा बैठने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि ऑटो में घर जाना मतलब फिजूल खर्च। तभी रमेश ने उसके हाथ में 500 का नोट देते हुए कहा, घर तक जाइएगा, ये राइड कंपनी की तरफ से है। हाँ, और जो बच जाए कल वापस कर दीजिएगा। जी सर, सुधा ने इतना ही कहा और ऑटो आगे बढ़ गया। सुधा को अपनी तबीयत अभी से ठीक लगने लगी, क्योंकि उसके मन में एक अच्छा सा एहसास था। दिन रात सभी का ख्याल रखने वाली सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसका भी ख्याल रखेगा।

एक दिन बाद जब सुधा ऑफिस पहुंची तो उसने रमेश का रास्ता देखना शुरू कर दिया। आज वो समय से जरा ही देर से आई थी। हालांकि अब तो ऑफिस के लोग सुधा को मिस लेट लतीफ बुलाने लगे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुधा कब आती है। उस दिन रमेश ऑफिस ही नहीं आया और सुधा अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन ना आने के कारण थोड़ा काम भी बच गया था। वो देर तक रुककर काम करती रही। आधा ऑफिस खाली हो चुका था। देखते ही देखते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सुधा को लगा था कि उसका काम आज पूरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही सुधा ने अपना काम 8 बजे पूरा किया कि वो खुशी से चिल्ला उठी और हाथ हवा में उठा के झूमती हुई खुद को शाबाशी देती हुई जोर से बोल उठी, यस शाबाश सुधा।

हो गया ना काम? अरे भाई सुधा, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सारे लोग जा चुके थे, इसलिए सुधा को लगा कि वो ऑफिस के अंदर अकेली ही है। चौकीदार भैया बाहर ही होते हैं, इसलिए वो यूं बेफिक्र खुशी से झूम रही थी कि अचानक उसे केबिन के दरवाजे पर खड़ा रमेश नजर आया, जो उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सुधा को ऐसे झूमते देखकर वो भी हैरान था, और उसके इस बचपने पर रमेश को हंसी भी आ रही थी। सुधा ने जैसे ही रमेश को देखा वो झेप गई। हड़बड़ी में अपनी चेयर में बैठने की कोशिश में वो गिरते गिरते बची। रमेश ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अरे मिस सुधा, ये भी क्या आपके विक्ट्री डांस का हिस्सा है? सॉरी सर, मुझे लगा कि ऑफिस में कोई नहीं है। आई एम सॉरी सर। सुधा शर्म से आंखें ही नहीं उठा पा रही थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज तक तो काम को लेकर ऐसी खुशी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं देखी। कीप इट अप। अपने काम को लेकर खुश होने में क्या बुराई है? आप जितना खुश रहेंगे कंपनी भी उतनी आगे बढ़ेगी मिस सुधा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रमेश ने गंभीर होकर कहा। जी सर। सुधा ने चौंक कर अपनी आंखें उसकी ओर लगा दी। काम के चक्कर में अपनी नींद कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर सिर पकड़कर बैठने से ज्यादा विक्टर डांस करती हुई अच्छी लगती हैं, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। तो सुधा ने झेपते हुए शर्मा कर नजरें झुका ली। अब आपको घर जाना है या नहीं? जी सर, बस अभी जा रही हूं, कहकर सुधा ने सामान उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। रमेश मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अपना काम पूरा करके थोड़ी ही देर में रमेश भी बाहर निकला। देखा तो तेज बारिश हो रही थी और सुधा ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी। आप अब तक नहीं गई? सर मैं छाता भूल गई, थोड़ी बारिश कम हो जाए तो निकलूंगी, सुधा ने बारिश की ओर देखते हुए कहा। मिस सुधा ये लीजिए, कहते हुए रमेश ने अपना छाता आगे किया। पर सर आप भी तो। मैं तो गाड़ी से जाने वाला हूं, अगर आप कहें तो आपको हम कहीं ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं सर, इतना ही बहुत है, मैं कल वापस ला दूंगी। और हाँ, आपके उस दिन के 235 रुपए बचे थे तो वो, कहते हुए सुधा ने बैग में हाथ डाला कि रमेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं वो आप आज जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऑफिस में आपने ओवरटाइम किया है तो इतना तो बनता है। सुधा और कुछ कहती इसके पहले ही रमेश गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुधा भी छाता खोलकर बारिश का सामना करते घर की ओर निकल चली। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी और सुधा घर के कामों में लगी थी। उसकी नजर बार बार छाते की ओर जाती और वो पिछले दिन की बातें याद करके मुस्कुरा उठती।

सुधा अपनी सोच में गुम थी कि सरला घर से निकलते हुए बोली, दीदी रश्मि के घर से नोट्स लेकर आती हूँ, इसे ले जाऊं, कितना प्यारा है। कहते हुए उसने वही छाता उठा लिया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का है, तू मेरा छाता ले जा। वो टूटा छाता, उसे ले जाने से अच्छा तो मैं भीगती हुई चली जाऊंगी, सरला ने नाराज होते हुए कहा। अरे आज बनवा दूंगी, तू बुरा मत मान। ये ले जाने दो ना, सरला ने

0: सुधा अपनी सोच में गुम थी कि सरला घर से निकलते हुए बोली, दीदी रश्मि के घर से नोट्स लेकर आती हूँ, इसे ले जाऊं, कितना प्यारा है। कहते हुए उसने वही छाता उठा लिया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का है, तू मेरा छाता ले जा। वो टूटा छाता, उसे ले जाने से अच्छा तो मैं भीगती हुई चली जाऊंगी, सरला ने नाराज होते हुए कहा। अरे आज बनवा दूंगी, तू बुरा मत मान। ये ले जाने दो ना, सरला ने जिद की। बिल्कुल भी नहीं, कहकर सुधा ने सरला के हाथ से छाता छीन लिया और ऊपर रख दिया। सरला लूटकर अंदर चली गई और सुधा ने मन ही मन सोच लिया कि अब की तनख्वाह मिलने पर सरला के लिए एक छाता भी ला देगी। पिता दोनों बहनों की बहस देख रहे थे। उन्होंने सुधा को निराश देखकर उदास स्वर में कहा, मैं तेरा घर बसाने की अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर पाया, उसकी जगह इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी तुझ पे ही डाल दी, माफ करना मेरी बच्ची। अरे पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा पिता को समझाकर वापस घर के कामों में लग गई। उसका ध्यान अब छाते से हट चुका था। मन एक बार फिर सवालों की गलियों में भटकने लगा। किसी भी तरह सरला और सौरभ को काबिल बनाना है, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर लायक बने। सुधा तो ज्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए उसके सामने छोटी छोटी नौकरी करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। रोज की तरह अगली सुबह जल्दी उठी और पानी भरने के बाद पिता को दवाई देने उनके पास पहुंची तो पिता का माथा तपता हुआ पाया। वो कराह रहे थे। सुधा घबरा गई, जल्दी से उनका टेम्परेचर और बीपी चेक किया और डॉक्टर अंकल को कॉल किया। उन्होंने कुछ फर्स्ट एड उपचार बताने के बाद 9 बजे क्लिनिक आने के लिए कहा। सरला पिता के पास बैठकर माथे पर गीली पट्टी रखने लगी और जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ खाने के लिए भी बना दिया। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में सभी को उसी दिन बुलाया गया था। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची। गीतों भरी कहानी ये श्रृंखला जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अपने सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलीटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3 लाख से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशंस के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org।
2: आप सुन रहे हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे AISSMS पुणे।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे हैं रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची, वहां उन्हें दिखाकर दवा लेकर उन्हें घर छोड़ने आई। फिर सरला को पापा के पास बिठाकर जल्दी ऑफिस भागी। पड़ोस की संजना दीदी को हिदायत दी कि वो भी बीच बीच में देखते रहें और कोई भी बात हो तो तुरंत कॉल कर दें। ऑफिस पहुंची तो वो आज 2 घंटे लेट हो चुकी थी। रमन ने उसे देखते ही कहा, सुधा आज तो रिकॉर्ड ही बना दिया, बॉस ने मिलने के लिए कहा है। अपना सामान डेस्क पर रखकर सुधा सीधे रमेश के केबिन में पहुंची। रमेश काम में व्यस्त था, उसने सुधा को बैठने का इशारा किया। इस चुप्पी ने तो सुधा की जान ही निकाल दी थी। रमेश ने अपना वो काम पूरा किया और पूछा, आज इतनी देर क्यों? सर पापा की तबीयत, कहते हुए सुधा का गला रूंध गया और वो आगे कुछ ना बोल सकी। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं?

किया। आप जानती हैं कि आप इन्फॉर्म करके घर पर रह सकती थीं, पर आपने 2 घंटे बाद ऑफिस आना चुना, लेकिन एक छोटा सा फोन कॉल करना ठीक नहीं समझा, क्यों? सर, मैंने सोचा कि संभाल लूंगी। सुधा ने रूंधे स्वर में ही कहा, क्या संभाल लेंगी आप? ना आप फोन उठा रही हैं, ना आप कुछ बता रही हैं। आप अक्सर देर से आती हैं, हमें आदत है, लेकिन इतनी देर, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता, मान लीजिए उस दिन की तरह चक्कर आ जाता, तो पता कैसे चलता? हम तो यही सोचेंगे कि आप देर से आती हैं और घर के लोग सोचेंगे कि आप ऑफिस में हैं। जानती हैं पिछले 1 घंटे से मैं कितनी टेंशन में हूं, आप फोन भी नहीं उठाती हैं। सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं होती है मिस सुधा, हम सब हैं। सुधा कुछ नहीं बोली, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो बस इतना ही बोल पाई, सॉरी सर। डॉक्टर ने क्या बताया है, रमेश ने पूछा तो सुधा ने सारी बात उसे बता दी। रमेश ने उसके सामने एक फाइल रखी और कहा, आप इस प्रोजेक्ट में मेरी टीम में हैं, मीटिंग दोपहर में है, तब तक पढ़ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो मीटिंग में पूछिए। सुधा ने फाइल उठाकर हां में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए पलटी कि रमेश ने पूछा, आप सैंडविच खाती हैं? जी, सुधा ने सवालिया लहजे में पूछा। ठीक है, चाय या कॉफी? सर, मिस सुधा, मेरी टीम का फिट होना भी मेरे काम का हिस्सा है, कुछ सीखिए राघव से, ऑफिस फंड से ही रोज नाश्ता करता है। सुधा ने जब आश्चर्य से रमेश की ओर देखा तो रमेश ने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया और उसकी मुस्कान से सुधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर निकलकर भी सुधा के चेहरे पर वो मुस्कान कायम रही।

सुधा की तरह ही समय भी पंख लगाकर ही उड़ रहा था। अब सुधा घर के साथ साथ ऑफिस के काम को भी सहजता से संभालने में जुटी रहती थी। ऑफिस उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसकी नजरें ऑफिस में रमेश को ही ढूंढा करती, लेकिन वो सामने आता तो सुधा घबरा जाती। सुधा रमेश के प्रोजेक्ट में जी जान से जुटी थी। रमेश सुधा को हिदायत दिया करता कि वो काम में मदद ले लिया करे, लेकिन सुधा की तो आदत थी कि वो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहती। रमेश ने सुधा को प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। रमेश और सुधा इस प्रोजेक्ट के कारण काफी समय साथ ही बिताते। एक रोज घर से टिफिन लाते हुए सुधा रमेश के लिए भी खाना ले आई। जब लंच टाइम में रमेश के सामने उसने उसका टिफिन रखा तो रमेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। सुधा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर चल दी। रमेश ने टिफिन वापस देते हुए उसे यही कहा कि बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, थैंक यू। प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही रमेश और सुधा एक रोज मीटिंग में गए तो लौटते वक्त वहां पास ही सागर के किनारे टहलने लगे। रमेश से बातों बातों में सुधा ने पूछा, सर आपको घर का खाना इतना पसंद है तो आप लाते क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। सुधा ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। उसने बैग से निकालकर अपना टिफिन रमेश के हाथ में दे दिया। आज देने से क्या होगा, रोज लाओ तो बात है, कहते हुए रमेश समुद्र के किनारे ही बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगा।

सुधा उसे आश्चर्य से देखती हुई बोली, सर आपको ऐसे खाते हुए देखने के लिए तो मैं रोज ला दूंगी। ये कहकर सुधा हंस पड़ी। तुम्हें ऐसे हंसता देखने के लिए मैं रोज ऐसा कर सकता हूँ, रमेश ने सुधा की ओर देखते हुए संजीदा होकर कहा। सुधा ने नजरें झुका ली। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जिसे दोनों समझते थे और इशारों में कह भी दिया करते थे, लेकिन बात खुलकर कोई भी नहीं कर रहा था। पर अब रमेश ने सोच लिया कि वो सुधा को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहता है और उसने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। उसने ठान लिया कि अगले ही दिन वो सुधा से अपने दिल की बात कह देगा।

अगले दिन जल्दी ऑफिस आकर रमेश सुधा का इंतजार करने लगा। न सुधा आई न उसका फोन लगा। चंदन ने बताया कि सुधा ने छुट्टी ली है। रमेश बेचैन सा रहता, लेकिन उसे लगा कि सुधा के साथ इतना कुछ लगा रहता है कि क्या किया जा सकता है। हफ्ते भर बाद चंदन ने बताया कि सुधा ने ऑफिस में काम छोड़ने की अर्जी दे दी है। रमेश को तो कुछ समझ ही नहीं आया। चंदन ने साथ आया एक खत भी रमेश को दिया। जब रमेश ने खत खोला तो उसमें लिखा था, सर इंसान चाहता क्या है और होता क्या है, आपसे एक छोटा सा वादा किया था कि आपके लिए रोज टिफिन लेकर आऊंगी, लेकिन ये भी नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से बाहर जा रही हूँ। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि ना कुछ कह पाई ना समझ ही पाई। पर अच्छी बात यह है कि जिनसे शादी हो रही है वो पापा के साथ साथ सरला और सौरभ को भी साथ रखने के लिए तैयार है। कम से कम इन दोनों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। कुछ बन जाएंगे तो अपने मन की कर पाएंगे, वरना परिस्थिति कहां किसी की सुनती है। माफ कीजिएगा, मिलने नहीं आ पाई। बस यही तमन्ना है कि आपके घर में कोई आ जाए जो आपको रोज टिफिन बनाकर दे। आप ये कोशिश कीजिएगा, सुधा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। काश उसने सुधा से अपने दिल की बात पहले ही कह दी होती। काश वो उसके पिता से ही बात कर लेता, वो भी तो उसके परिवार को अपनाना चाहता था। पर अब इतनी देर हो चुकी थी। रमेश के मुंह से केवल इतना ही निकला, सुधा तुमने कम से कम मुझे इतना अपना तो समझा कि मेरी खुशियों को भी अपनी खुशी मानकर अपने साथ ही निछावर कर दिया।

तो एक बार फिर भागते शहर मुंबई में जीवन की जद्दोजहद के बीच एक और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। वाचन नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

बस इतना भी न आइये कि सितारे देखते हैं, ये मोती सी चमक, ये पायल की खनक, क्या सोचकर ये रात आई है, ये हुस्न की कारीगरी, ये आंखों की जादूगरी, मोहब्बत के तिलस्म में गिरफ्तार, काश ये सारा जहां होता, कुछ होता न होता, प्यार में ये मुमकिन होता।

दिल धड़कता है, दो घड़ी तो बैठ जाइए, न जाइए दूर कि जी घबराता है। दिल अपना था आपसे लगा बैठे, राज दिल आपसे सुना बैठे। कुछ आपने भी छुपाया है, कहिए न कहिए, कलियों के दिल को धड़काया है आपने, कहिए कि न कहिए। जाने बातों से बहलाते क्यों हैं, सच कहते नहीं कि हाँ हमने भी मोहब्बत की है, रात हमने भी तन्हाइयों में बसर की है।

शोलों से न खेलिए, ये नाजुकी की बात नहीं, जो इसको छेड़ा तो बारहा मचल जाएगी। पास आइए न फेरिए ये नजरें करम, दिल आपका है यकीन मानिए कि न मानिए। न देखो इधर ऐ शब के तारों, जरा छुप जाओ, चिराग हुस्न से आ रही है रोशनी, थम थम।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। बादलों से बरसते बूंदों के मोती जा अटके हैं उनकी जुल्फों में, भीगते शानों पे कभी ढलते कभी आंचल में सिमट जाते हैं। ये बूंदों की खुशनसीबी कुछ ठहरी कुछ ढल गई, कुछ टूट कर लबों को भिगो गई। संदली रात में बारिशों का रंग चढ़ता गया, लम्हा लम्हा उनके रुखसार का रंग गुलाबी होता गया।

तरस जाए। इश्क हुस्न के दरमियां न रहे आज कोई फासला, पर्वतों से टूट के देखो काली घटा बरसती है, न पूछिए हमसे कि बारिशों से भी आग बरसती है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत लता मंगेशकर और मुकेश के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है सन्यासी।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए, स्वर मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम पत्थर के सनम।

0: एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
1: एक और
0: गया
1: आ गए।
0: एक और आ गया।
1: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
2: अरे ललन मियां आप काट दिया ना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला,

फिल्म शहीद का गीत अभी आपने सुना, स्वर लता मंगेशकर और साथियों की थी। गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन। रवि के संगीत निर्देशन में हम आपको साहिर लुधियानवी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है अमानत।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था अमानत। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और धुन बनाई थी रवि ने।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: वर्मा मलिक का लिखा गीत सुनिए। लक्ष्मीकांत परिलाल का संगीत है, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

0: तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे हिंदी में समाचारों के बाद संध्या 6:05 पर। इस समय संध्या के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
4: मांग से 3, उनमें से 2 सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर

0: कर होगा।
1: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने का शेष भाग सुनिए।

0: अपने फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत सुना। गीतकार इंदिवर थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने।
1: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
2: ये शाम मस्तानी।
1: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
2: दिल इंसान का एक तरह।
1: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
3: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म शोर का गाना, आवाजें मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की। गीत को राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने लिखा और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है वहां से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ कटी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
3: और अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम अमानुष, गीत रचना इंदिवर की और संगीत श्यामल मित्रा का।

किशोर कुमार की आवाज थी फिल्म अमानुष के लिए। कार्यक्रम का अगला गीत दिलीप सेन और समीर सेन के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा हुआ, युगल स्वर लता मंगेशकर और कुमार सानू की, फिल्म का नाम है ये दिल लगी।

लता मंगेशकर और कुमार सानू को आपने सुना। फिल्म का नाम था ये दिल लगी। और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। जतिन ललित की धुन, समीर की गीत रचना, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, फिल्म का नाम वास्तव।

0: इस गाने के साथ ही आज का तराने नए पुराने ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। जरोखा में सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए हमारी इस सभा में शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पत्रिकर की बातचीत का भाग 4। प्रस्तुत करता है जुबैर खान। आज रात्रि 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे हास्य नाटिका बहादुरी, लेखक राधेश्याम अग्रवाल और निर्देशक विजेंद्र मोहन। चित्रलोक का प्रसारण समय रात्रि 8:15 और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। आज रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम फिल्मकार मनोज कुमार पर केंद्रित होगा। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। ढलती जाए रात का प्रसारण होगा रात्रि 10:30 पर और 11 बजे आप सुनेंगे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब सुनिए हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार और चिंतन, 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का 260वां भाग। संगीत सरिता कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 और कल संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला घुंघरू की तरह, कलाकार गायक संगीतकार रविंद्र जैन, इसका भाग 5 प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक। कल सुबह 7 बजे हमारा दैनिक कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर आप सुनेंगे हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी का प्रसारण समय कल सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे, आलेख और स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कल सुबह 8:30 पर और कल रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक, 9:30 पर यानी कल सुबह 9:30 और कल रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार और ये कार्यक्रम संगीतकार जीएस कोहली पर केंद्रित होगा। आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। कल सुबह 10 बजे आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी, कहानी होगी जिंदगी की यही रीत है, लेखिका रिद्धि चौररिया, वाचन और संपादन नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। कल दिन में 11 बजे चित्रपट संगीत।

11:30 पर मैटिनी शो में आप सुनेंगे जल है तो कल है, इस विषय पर पर्यावरण विशेषज्ञ शुभजीत मुखर्जी से यूनुस खान की बातचीत का भाग दो। संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुत करता है जुबैर खान। कल दोपहर 12:05 पर यादों की महफिल, दोपहर 1 बजे सुरीला सफर, 2:30 पर सदाबहार नगमे और 3 बजे फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत। नाट्य तरंग में कल दोपहर 3:30 पर आप सुनेंगे नाटक वो मंजिल कहां, लेखक डॉक्टर रणवीर सक्सेना, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। बॉम्बे टॉकीज में कल दोपहर बाद 4 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की गई बातचीत का भाग पहला, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। कल संध्या 5 बजे छाये गीत का पुनः प्रसारण और 5:30 पर आप सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम तराने नए पुराने। विशेष जयमाला कार्यक्रम कल संध्या 7 बजे प्रसारित होगा और ये कार्यक्रम पार्श्व गायक अनूप जलोटा पर केंद्रित होगा, यानी इस कार्यक्रम को पेश करेंगे अनूप जलोटा। कल संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे जिज्ञासा, रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनो कहानी पिसन हारी का कुआं भाग एक, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, वाचक स्वर अमरकांत दुबे का, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। छाये गीत का प्रसारण कल रात्रि 10 बजे आलेख और स्वर आरती श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता होंगे राघवेंद्र सिंह नेगी। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण और अब संध्या रंजन।

अभी आपने वाणी जयराम और साथियों को सुना। फिल्म का नाम था गुड्डी, गीतकार गुलजार थे और संगीतकार थे वसंत देसाई।

पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत से सजाया वसंत देसाई ने। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी और ये फिल्म थी दो आंखें बारह हाथ। इसके साथ ही आज का संध्या रंजन कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: घुंघरू की तरह कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: प्यारे दोस्तों, तो आज हम फिर हाजिर हैं। दादा का एक बार सत्कार करता हूँ। नमस्कार दादा। हमने कई रागों के बारे में बातचीत की, आपने रागों के बारे में बहुत कुछ बताया और ऐसे रागों के बारे में बताया जिसमें आपने फिल्मी गाने निबद्ध किए और वो बहुत मकबूल हुए। आज उसी शास्त्रीयता को बरकरार रखते हुए, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए, हम फिर शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय गीतों के बारे में, शास्त्रीयता के बारे में और फिल्मी गीतों के बारे में आपसे सुनेंगे।
2: एक प्राइमरी राग जिसको हम यमन के नाम से जानते हैं, उसमें बड़ा अच्छा अच्छा काम किया है हमारे सारे कंपोजर्स ने। खास तौर से रोशन साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए और मदन जी ने भी बड़ा अच्छा गाना बनाया, जिया ले गए मेरा सांवरिया, है ना
1: जी? जी,
2: रोशन साहब के तो
1: बहुत गाने हैं उन्होंने,
2: बहुत गाने
1: यमन में बहुत काम किया है।
2: मेरा भी ये गीत लोगों ने बहुत पसंद किया है।

0: दादा, जैसे कि हर संगीतकार के अपने कुछ पसंदीदा राग होते हैं, आपकी शास्त्रीय संगीत की जो चादर है बहुत बड़ी है और उसमें न जाने कितने गीत समा गए बड़ी सुंदरता से, बड़े अच्छे ढंग से। तो आपके भी कुछ राग ऐसे होंगे मखसूस, खास राग जो आपको बहुत पसंद होंगे और मौका मिलते ही आपने उन रागों पर या उसी एक राग पर गाने बनाए होंगे, उसके बारे में कोई विवरण दें।
1: यूँ तो हर राग बहुत अच्छा सजाया है हमारे बुजुर्गों ने,
0: जी
1: उनकी उन पर बलिहारी है जिन्होंने ये राग कंपोज किए हैं, जिनको जिनको सोचा है।
0: क्या कहने,
1: हम लोग तो उसका इस्तेमाल भर करते हैं, वो भी मैंने आपसे जैसे अर्ज किया
0: जी
1: कि अपनी आत्मा अगर उसमें डाल दें तो कोई बात बन जाती है।
0: जी
1: वैसे राग वो जिसमें अनुराग हो, बस
0: क्या
1: अनुराग
0: बात,
1: सबसे
0: क्या
1: अच्छा राग
0: कहने,
1: है।
0: क्या कहने, वाह।
1: तो और हमारे शास्त्रों में कहा है कि रंजको जन चित्तानाम सराग कथितो बुधा, जो चित्त का रंजन करे, उसकी
0: वाह,
1: परिभाषा ये है।
0: बहुत सुंदर
1: ऐसे मुझे माइनर कॉर्ड्स के राग जो है ना, जो
0: जी।
1: उसके पसंद है ज़्यादा।
0: जैसे
1: बहुत सारे जो उसमें हैं, कई कई राग जो इस तरह के हैं ना, जो माइनर नोट्स में हैं। भैरवी थाट के बहुत सारे राग हैं, भैरव थाट के अपने राग जो है ना
0: जी
1: बड़े अच्छे अच्छे हैं। उधर पूर्वी थाट के राग हैं, वो सब बड़े सुंदर सुंदर राग, उनकी उनमें एक अजीब उसमें एक आकर्षण है और एक ठहराव है।
0: जी
1: लेकिन अब फिल्मों में चूंकि हमें न्याय करना पड़ता है चरित्रों के साथ।
0: हाँ, सिचुएशंस की भी अपनी
1: हाँ
0: दरकार होती है। लेकिन आप कोई ऐसा गीत सुनाइए जो आपने शास्त्रीय संगीत पर आधारित किया
1: जी
0: हो
1: जी
0: और
1: जी
0: आपको पसंद हो।
1: आशा जी ने मेरे गीत गाया, वो आजकल बहुत लोग उसको सारे तमाम कलाकार गाना चाहते हैं।
0: वाह, जरूर।

0: उद्योग में बहुत से कलाकार गा रहे हैं या अन्य स्थानों पर भी लोग गा रहे हैं, तो शास्त्रीय संगीत की जानकारी उनके लिए कितनी जरूरी है, इसकी सार्थकता पर थोड़ा सा आप बताएंगे।
1: यूं तो संगीत मनुष्य का स्वभाव है, स्वाभाविक गुण है उसका, लेकिन अगर संगीत का मर्म जानना है, रहस्य जानना है, तो शास्त्रीय संगीत के बिना कोई शॉर्टकट नहीं, दूसरा रास्ता नहीं है उसके लिए, क्योंकि ये गंधर्वों की विद्या है, देवों की विद्या है
0: जी,
1: मनुष्यों को कहाँ उपलब्ध हो सकती है, तभी होगी जब समर्पण भाव से उसको सीखें।
0: सही बात है। आजकल शास्त्रीय संगीत के बारे में लोगों का, गायकों का, कलाकारों का ये कहना है कि कोई ज़रूरत नहीं है शास्त्रीय संगीत सीखने की, और जैसा गाना मिला है सिनेमा के सिचुएशन पर गा दिया जाए। तो उन गानों की उत्पत्ति को आप कितना महत्व देते हैं जो बिना शास्त्रीय संगीत की जानकारी के बने बनाए और गाए जाते हैं?
1: मैं भी उसी
0: क्षेत्र में हैं।
1: हाँ, उसी मतलब इंडस्ट्री को बिलोंग करता
0: जी,
1: हूँ। और
0: जी,
1: लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि उम्र जो है ना, वो हर एक की अलग अलग है।
0: जी
1: है ना,
0: जी,
1: किसी की 100 वर्ष है, किसी की 50 है, किसी की 20 है।
0: जी जी
1: है ना,
0: जी जी
1: तो इसी तरह गानों की भी आयु जो है ना, वो इतनी सीमित हो जाती है कि वो आए गए कब, आए कब चले गए,
0: पता ही नहीं चलता।
1: हाँ, बाद में ये लगता ही नहीं कि ये गाने भी हैं।
0: सही बात है, बिल्कुल सही बात।
1: गाना नहीं लगता, वो कुछ और ही लगता है।
0: कुछ देर के लिए लगता है, कोई तराना सा उठा, फिर कहीं जाके दब गया।
1: हाँ,
0: और
1: ठीक
0: खत्म
1: है
0: हो
1: बस।
0: गया।
1: मगर ये है कि जब प्रसिद्धि जिसको मिल जाती है, जो चीज़ पसंद लोगों ने कर ली है, लाखों लोग करोड़ों लोग जिसको गाते हैं,
0: जी
1: उसको खराब कहना भी मुश्किल है।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये कि शास्त्रीय संगीत की जानकारी नितांत आवश्यक है
1: बिल्कुल
0: अगर एक
1: बिल्कुल, उसके
0: संपूर्ण
1: सिवा
0: गायक
1: तो
0: बनना
1: रास्ता
0: है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं।
1: जी।
0: चलते चलते आज की इस कड़ी में कोई एक और गीत आपका ही निर्मित किया हुआ किसी शास्त्रीय राग पर।
1: मैं एक ऐसी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिस रचना पर फिल्म बनाई गई। श्री राज कपूर जी ने ये गीत सुना और इस पे कहानी सोची, इसके आधार पे कहानी का ताना बना हुआ। ये गीत राग किरवानी में निबद्ध है। मैंने कोशिश की है कि राधा और वीरा दो चरित्र हैं इस गीत में, दोनों के साथ न्याय करूं, साहित्यिक पक्ष भी इसका अच्छा बन पड़ा है।

घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में श्रोताओं आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र व्यर्थ नहीं जाने देंगे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने दिल्ली दौरे की प्रमुख चर्चाओं की जानकारी दी। सांसद विष्णुपद रे ने निजी विश्वविद्यालय विनियमन 2026 स्थगित कर द्वीप समूह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की। और अंडमान निकोबार की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से लोगों को परिचित कराने के लिए श्री विजयपुरम में आयोजित होगी कालापानी ट्रेल हेरिटेज वॉक।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने आज आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हाल ही में नई दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों तथा भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ द्वीप समूह के विकास और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में द्वीपों से संबंधित कई विषयों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और शीघ्र प्रगति की उम्मीद है। श्री तिवारी ने बताया कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम के साथ हुई बैठक में ग्रेट निकोबार और संरचना परियोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री जी ने जनजातीय समुदायों के हितों और उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का भी भरोसा दिया। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ हुई बातचीत में द्वीपों में पेयजल संकट के समाधान, बांध के निर्माण, वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के गठन तथा जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर चर्चा की। इस अवसर पर मत्स्य पालन और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी केंद्र सरकार के समक्ष विभिन्न सुझाव रखे गए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपे गए ज्ञापन में लद्दाख की तर्ज पर अंडमान निकोबार में ग्रुप बी और ग्रुप सी के कुछ पदों पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने, डोमिसाइल नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन, कनेक्टिविटी तथा रोजगार से जुड़े विषय शामिल किए गए। श्री तिवारी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मुख्य भूमि से दवाइयों की आपूर्ति में होने वाली देरी को कम करने के लिए जेम पोर्टल से संबंधित व्यवस्था की समीक्षा का सुझाव भी दिया गया है, ताकि आवश्यक दवाएं समय पर उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा का पुनः आयोजन कम समय में कराया तथा प्रश्न पत्र लीक जैसे मामलों में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था करने की दिशा में भी पहल की है। श्री तिवारी ने कहा कि अगले तीन

वर्षों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं में सुधार की दिशा में कार्य होंगे तथा 50 मेगावाट क्षमता के LNG आधारित विद्युत संयंत्र के निर्माण से बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार ने द्वीप समूह से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, सांसद और कालापानी ट्रेल हेरिटेज वॉक। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सांसद विष्णुपद रे ने उपराज्यपाल से प्रस्तावित अंडमान निकोबार द्वीप समूह निजी विश्वविद्यालय विनियमन 2026 को फिलहाल स्थगित करने और इसके स्थान पर द्वीप समूह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में पहल करने का आग्रह किया है। 21 जुलाई को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि द्वीपवासी लंबे समय से केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, जबकि निजी विश्वविद्यालय की कोई स्पष्ट सार्वजनिक मांग सामने नहीं आई है। उन्होंने प्रस्तावित व्यवस्था में शिक्षाविदों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षकों, छात्रों और जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की भी आवश्यकता बताई। सांसद ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से किफायती उच्च शिक्षा, बेहतर शोध सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति और द्वीपों की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष पाठ्यक्रम उपलब्ध हो सकेंगे। इस संबंध में ज्ञापन की प्रतियां प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष तथा अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव को भी भेजी गई है। सांसद विष्णुपद रे ने प्रशासन से सरकारी कॉलेजों के छात्रों को मिलने वाले मासिक छात्रवृत्ति को वर्तमान 1,500 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 4,000 रुपये करने का आग्रह किया है। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के कारण मौजूदा छात्रवृत्ति छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा उन्होंने अक्टूबर 2025 में भी उठाया था और शिक्षा सचिव ने दिसंबर 2025 में छात्रवृत्ति बढ़ाने के प्रस्ताव की प्रक्रिया अधीन होने की जानकारी दी थी, लेकिन 9 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। सांसद ने कहा कि छात्रवृत्ति में अंतिम संशोधन वर्ष 2015 में किया गया था, जब इसे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया था। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, अंडमान कॉलेज, डॉ B.R. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर, महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय कैंबलवे, डॉ B.R. अंबेडकर राजकीय पॉलिटेक्निक, विधि महाविद्यालय तथा अन्य सरकारी शिक्षण संस्थानों के छात्रों के हित में छात्रवृत्ति बढ़ाने के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। अंडमान निकोबार प्रशासन का कला और संस्कृति विभाग भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास अंडमान निकोबार चैप्टर के सहयोग से श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में नियमित रूप से हेरिटेज वॉक आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य द्वीप समूह की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से पर्यटकों, स्थानीय लोगों, छात्रों और विरासत प्रेमियों को परिचित कराना है। इसके तहत कालापानी ट्रेल हेरिटेज वॉक 30 जुलाई को सुबह 5:30 बजे से सुबह 7 बजे तक आयोजित होगी। इस दौरान प्रतिभागियों को द्वीपों के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण विरासत स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। यह हेरिटेज वॉक पर्यटकों, छात्रों, फ्रीलांस और अधिकृत टूरिस्ट गाइड, टूर ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों तथा विरासत में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए खुली है। इच्छुक प्रतिभागी अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए कला और संस्कृति विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए 9434296432 पर फोन किया जा सकता है या artandculture@andnic.in पर ईमेल भेजा जा सकता है। दक्षिण अंडमान जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 स्कूल से कार्मल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक जाने वाली सड़क पर सभी 4 पहिया वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य के चलते यह प्रतिबंध लगाया गया है।

और निर्माण कार्य पूरा होने तक लागू रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र व्यर्थ नहीं जाने देंगे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने दिल्ली दौरे की प्रमुख चर्चाओं की जानकारी दी। सांसद विष्णुपद रे ने निजी विश्वविद्यालय विनियमन 2026 स्थगित कर द्वीप समूह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की और अंडमान निकोबार की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से लोगों को परिचित कराने के लिए श्री विजयपुरम में आयोजित होगी कालापानी ट्रेल हेरिटेज वॉक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया।

0: के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
1: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आंखों की आंखों में इशारा हो गया।
3: शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की रचना, आवाज मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस।

धरती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला।

आशा भोंसले को आपने सुना, फिल्म का नाम था कस्मे वादे। गीत रचना गुलशन बावरा की थी और तर्ज राहुल देव बर्मन की थी।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दो झूठ, गीत एमजी हशमत का था और धुन शंकर जयकिशन की थी। हम आपको बताना चाहेंगे बॉम्बे टॉकीज में कल दोपहर बाद 4 बजे आप सुनेंगे फिल्मी दुनिया के जाने माने संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी गीत रचना, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म त्रिशूल के लिए, शब्दकार साहिर लुधियानवी, धुन खयाम साहब की।

0: अनमोल यादें। अनमोल यादें।
1: नमस्कार श्रोताओं, अनमोल यादें कार्यक्रम के इस चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर जी का। राजीव साहब, बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, नमस्कार।
1: अब पिछले एपिसोड में हमने कुछ नए फिल्मों की बात की थी, तो आज भी क्या नए फिल्मों के बारे में ही हम जानेंगे?
2: जी हाँ, नए फिल्मों में भी ऐसे गाने जैसे मैंने कहा था कि काफी है, क्योंकि म्यूजिक कंपनीज का रोल भी था इसमें।
1: जी जी,
2: ये एक गाना जो हमने चुना है आज वो फिल्म हासिल का है।
1: अच्छा।
2: और ये हासिल की एक सिचुएशन है जो फिल्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल सिचुएशन है, जहां पे ये सूफी गाना एक दरगाह में बज रहा है।
1: अच्छा।
2: इसके गायक है रूप कुमार राठौड़ और जावेद अली, और इसके जो बोल है वो इसरार अंसारी ने लिखे हैं। बड़ी ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है जतिन ललित की। तू ही तू, तू ही तू मैं पेश करना चाहूंगा इस गाने।

0: क्या बात है। हासिल फिल्म का ये सूफियाना कलाम जो इसरार अंसारी साहब का लिखा हुआ था हमने सुना, और अब हम किस गीत की ओर बढ़ रहे हैं राजीव साहब?
1: अब हम उस गीत की तरफ बढ़ेंगे जो देखिए 2005 में एक जहर करके फिल्म आई थी
0: हाँ।
1: जो थोड़ी बहुत चली भी थी। उसके गाने अगर तुम मिल जाओ और वो लम्हे बहुत
0: जी
1: सुपरहिट
0: जी
1: हुए थे,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इसमें एक ऐसा गाना था जो मेरे लिए बहुत पसंदीदा है और बहुत ही सोलफुल जिसे कहते हैं गाना
0: हाँ हाँ
1: है,
0: हाँ
1: और ये केके ने गाया था, जिसकी तुलना मैं तो बड़े सिंगर्स के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि अगर कोई सिंगर इस जनरेशन में था जो उस लेवल पर पहुंच सकता था वो था केके।
0: जी जी
1: ये तो
0: बिल्कुल।
1: कोइंसिडेंस है कि उनके इनिशियल किशोर कुमार से मिलते थे
0: हाँ
1: और वो सीखे हुए भी नहीं थे जैसे किशोर कुमार थे,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन उनके गानों में जो रूह थी
0: हाँ
1: वो बहुत ही कम सिंगर्स में मिलती है
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: जनरेशन के,
0: बिल्कुल सही।
1: और वो गाना मैं इसके लिए पेश कर रहा हूं क्योंकि इस बार इसका म्यूजिक डायरेक्टर है रूप कुमार राठौड़,
0: ओ
1: जो हासिल के गाने में एक सिंगर थे। इस गाने के गीत लिखे हैं शकील आजमी ने,
0: जी
1: और जैसे मैंने कहा फिल्म जहर, ए बेखबर ए बेखबर।

0: क्या बात है, जहर फिल्म का ये अनमोल गाना हमने याद किया और इसी के साथ आज का ये एपिसोड पूरा हो रहा है। राजीव जी, अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं।
1: थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।
2: अनमोल यादें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अनमोल यादें।

0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं हास्य नाटिका बहादुरी। लेखक है राधे श्याम अग्रवाल, निर्देशक ब्रिजेंद्र मोहन।
1: अरे भाई कौन है?
2: अरे दरवाजा खोलो भी, अंदर से बंद किए बैठे हो।
1: अरे कौन साहब है, नाम पता तो बताइए।
2: भाई मैं हूँ यानी के चुगताई, खोलो भी।
1: अभी आया आई गया।
2: जनाब दरवाजा पीटते हुए मेरे तो हाथ सुर्ख हो गए और चिल्लाते चिल्लाते गला खुश्क हो गया। यानी कि आप शाम होते ही दड़वे में घुस बैठते हैं। या अल्लाह, इंसान को इतना डरपोक क्यों बनाया है?
1: हाँ इंसान को इतना डरपोक क्यों बनाया है? हमारा यार रहने भी दो, देख ली तुम्हारी दिलेरी। हाँ जब तुम्हारे यहाँ दिन दहाड़े चोर घुस पड़ा था तो जनाब लिहाफ को लपेट कर लेट रहे थे। हाँ
2: जी हाँ, आपको क्या मालूम मैं किस हालत में था? बिल्कुल निहत्था, यानी कि आस पास कोई छोटा मोटा डंडा भी नहीं था।
1: मोटा डंडा नहीं था? अरे डंडा नहीं सही, आपके हाथ पांव तो बदस्तूर थे। जैसा आपने अभी दरवाजा पीट डाला, अगर ऐसे ही आपने हाथों का इस्तेमाल उस बदमाश चोर पर करते तो मैं समझता कि आप वाकई दिलेर इंसान कहलाने के हकदार हैं।
2: अरे मुंशी जी, उसके पास पिस्तौल थी। पिस्तौल?
1: पिस्तौल?
2: जी हाँ।
1: अरे हाँ, मैंने बड़ी बड़ी पिस्तौलें देखी है, बड़ी बड़ी सुनी है और दागी भी है। पिस्तौल का चलाना कोई आसान नहीं है। हाँ क्या बताऊं, ना हुई इस वक्त, वरना वो चलाकर दिखाता।
2: हाँ जी क्यों नहीं, आपका क्या कहना? सन 14 की लड़ाई में आपने ही तो अंग्रेजों को जिताया था।
1: अरे 14 की लड़ाई ना सही, लेकिन मैं इतना डरपोक तो नहीं कि लिहाफ में घुसकर तमाशा देखूं।
2: वाह वाह वाह वाह वाह, जब कहीं मौका पड़ेगा तो फौरन आपको बुला भेजूंगा।
1: हाँ, कैसी बातें।
2: हमारा छोड़िए भी इस तकरार को। हाँ। ये बताइए कि आपके मोहल्ले का क्या हाल है?
1: हाँ? यानी कि मेरे मोहल्ले का क्या पूछते हो? अरे बड़े बड़े बदमाश चोर डाकू अच्छी तरह जानते हैं कि मैं रहता हूँ। मैं हाँ, इस मोहल्ले में क्या मजाल है कि कोई आंख उठाकर भी देख सके।
2: ठीक है मुंशी जी, ठीक है। हाँ? लेकिन अभी कल का ही किस्सा सुनिए।
1: हाँ?
2: आपके मोहल्ले के आसपास का किस्सा है।
1: यानी कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरे मोहल्ले का किस्सा आप मुझे सुनाए? यानी कि बात मेरे पास भी नहीं पहुंची और आपके यहाँ नशर भी हो गया है।
2: अरे आप तो दरवाजे की कुंडी चढ़ाए बैठे रहते हैं। हा? आपको क्या खबर बसंत की? कल ही की बात है कि आपके मोहल्ले में एक नहीं दो कत्ल हुए।
1: कत्ल? अमन क्या कह रहे हो, मेरे मोहल्ले में कत्ल?
2: वो जो घनश्याम बाबू थे ना, वो और उनकी बीवी का सारे जेवर लेकर चंपत हो गया। अच्छा? मुंशी जी ऐसा खून हुआ है कि क्या बताऊं।
1: किस जुगताई साहब, सही से बयान कर रहे हो ना, अम मजाक ना करो है। मैं खुद ये कहता था ना कि जमाना बड़ा नाजुक है और ये मोहल्ला तो अजीब वीरान जगह में है।
2: मैं खुद ही आपसे अर्ज कर रहा था ना। हाँ? कि इस मोहल्ले को छोड़ दो और किसी अच्छे से मोहल्ले में मकान ले लो।
1: अरे मियां आप तो अपने ही आदमी ठहरे, आपसे क्या छिपाना, किसी अच्छे मोहल्ले में खुद ही मकान की तलाश में।
2: नहीं साहब, आप फौरन नया मकान ले लीजिए। जान है तो जहान है मियाँ। जी हाँ, इस मकान में बहुत खतरा है।
1: खतरा? यानी खतरा है? हाँ बिल्कुल, अभी परसों की बात है कि किस कदर तेज पानी बरस रहा था और हवा की साए साए लाहौल विलाह हुआ तो रात के 12 बजे यकायक ऐसा मालूम हुआ कि मेरे कमरे की छत पर धम से कोई कूदा।
2: क्या कहा, परसों पानी बरस रहा था?
1: जी हाँ।
2: अरे भाई उस दिन तो शहर में करीब करीब एक दर्जन चोरियां हुई थी। अल्लाह खैर करे कि आप बच गए।
1: आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए। मैंने बड़ी हिम्मत से काम लिया।
2: अच्छा?
1: और फौरन दीवार पर लगे बिजली के बटन को दबा दिया। ये चक से मेरा दिल करके बैठने लगा।
2: हाँ। बैठने लगा
1: जी हाँ। बिजली नदारत नदारत और खूब अंधेरा।
2: बस कीजिए बस कीजिए। हाँ। मेरा तो पसीना छूटा जा रहा है।
1: खूब अंधेरा लाहौल मिला हुआ।
2: अमा अमा कोई है? अमा कोई है? अंदर कोई है?
1: चुप रहिए, जो भी होगा चला जाए।

0: चला जाएगा। नाक बैठे बैठा क्यों मुसीबत मोल लेते
1: अरे
0: हो?
1: कोई है जरूर, देखा कैसा खामोश हो गया।
0: चुप चुप चुप चुप चुप रहिए, चुप रहिए, हाँ चुप रहिए।
1: लेकिन मैं देखता हूँ, आप ही देख लेता हूँ।
0: इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, उस दरवाजे के पास से हट जाइए, कहीं कोई उधर से ना निकल पड़े हैं।
1: अरे आप मेरी फिक्र ना करें, आप उधर हो जाइए, उधर हो जाओ, उधर हो जाओ।
0: ठीक है ठीक है।
1: कोई चाकू या छुरी है?
0: चाकू छुरी? नहीं नहीं, चाकू छुरी तो बावर्ची खाने में पड़े हैं। अरे कोई कमबख्त ऐसा ना करे कि मेरा ये चाकू छुरी ले आए और मुझे पर
1: मेरा ख्याल है
0: क्या जरूर कोई डाकू है, डाकू है। अगर डाकू है तो उसके पास पिस्तौल तो होगी ही, और फिर अल्लाह अल्लाह
1: पुलिस चौकी पर अगर इतला हो जाए तो बस मामला ही बन जाए।
0: ऐसा करिए, ऐसा करिए, मैं इस दरवाजे से बाहर जाता हूँ, सीधे सड़क पर, और जोर जोर से, जोर जोर से चलाऊंगा, आवाजें लगाऊंगा, मोहल्ले वाले इस बदमाश को घेर लेंगे।
1: अरे बस सीधा छत पर खड़ा होकर आपके ऊपर थाए से पिस्तौल दाग देगा। जी हाँ, ऐसी अकलमंदी हरगिज ना कीजिएगा।
0: बात तो आपने बड़े कायदे की सोची है, जी चाहता है कि आपको दाद दूं। वाह वाह वाह।
1: देखिए देखिए देखिए, आप दूसरी तरकीब सुनिए, मैं अभी ललकारता हूँ। अम्मा चारपाई में मच्छरदानी का वो बांस है ना, खोलिए खोलिए अम्मा, खोलिए जल्दी खोलिए।
0: मगर बांस और पिस्तौल का क्या मुकाबला मियां?
1: अबे अभी अभी देखिए मुकाबला, बांस 6 हाथ का है, पिस्तौल 6 इंच की। आहिस्ता से, अरे आहिस्ता से खोलो खोलो,
0: बांस खोलो। यानी कि मैं भी बांस से उस पर हमला करूंगा? ठीक है, जब दोनों तरफ से बांसों पर हमला होगा तो उसके हाथ की पिस्तौल अपने आप जवाब दे जाएगी, काम ही नहीं करेगी।
1: ये लीजिए, ये लीजिए, और आप इस दरवाजे को इस तरह से यूं ठीक खड़े हो जाइए पीछे, मैं दरवाजे की कुंडी खोल दूंगा, और जैसे ही वो दरवाजे में आए वैसे ही हम दोनों तरफ से हमला कर देंगे, समझे? हाँ
0: जी हाँ, तैयार है, मैं बिल्कुल तैयार है। आप खोलिए खोलिए कुंडी,
1: कुंडी खोलता हूँ,
0: तैयार
1: तैयार। वो देखिए, अरे एक नहीं, चार चार है, और कांटे छुरी पिस्तौल डंडे से
0: सामने वाले दरवाजे से बना तो जान गए।
1: भागना आसान काम नहीं है, हम लोगों ने खटपट की नहीं, अपना इसी में कि आप तमाचा देखें।
0: पर दुखदाई साहब, ये तो बर्तन बांधे बांधे लिए जा रहे हैं, मैं बेगम को क्या मुंह दिखाऊंगा?
1: तो वही देखो, मेरी बेगम को तो मेरी जान प्यारी है, ना कि ये बर्तन बांधे।
0: दुखदाई साहब, होशियार, वो सामने से आ रहे हैं, पांच छोड़ दो, तू ऊपर उठाकर
1: मुंशी जी। नहीं, अब तो मुकाबला हो गई, मुश्किल बनने से काम नहीं चलेगा, मुकाबला तो करना ही पड़ेगा।
0: जी हाँ, मेरा तो दम निकला, पसीना छूट रहा है, मैं जरा सुनो, मरा, मुझे बचाओ, मेरी बेगम, मेरे बच्चे।
1: अरे मुकाबला तो हो गई, उस दिल मत बनिए, उस दिल मत
0: बनिए। अरे वो सुनिए, वो पिस्तौल निकाल रहा है, मुझे गोली चला देगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
2: अरे कहाँ है चोर? आए हाय, क्या हुआ, क्या हुआ?
0: कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस मर ही गया था।
2: पसीना छूट रहा है, आपकी सांस तो चल रही है, खैर तो है, सोते हुए में ये क्या हुआ? खुदा खैर करे, मालूम होता है ख्वाब में डर गए।
0: बेगम बेगम, एक गिलास पानी दे दो, मेरा दिल धक धक धक धड़क रहा है, कितना भयानक सपना देखा।
2: ये लो पानी। अरे मैं भी तो सुनू कि ख्वाब में क्या देखा। आए हाय, मैं तो डर ही गई, मैं तो समझी कि घर में आज कोई चोर घुस आया है और आपको उसने दबोच लिया है।
0: मुझे कोई दबोच ले? क्या मजाल किसी की, देख लिया बड़े बड़ों को, किसी की क्या मजाल के मुझे।
2: बस बस, रहने भी दो शेखी, दिन दहाड़े एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते तो डर लगता है, फिर ऐसे बहादुर क्या सपने में डर कर चिल्लाया करते हैं?
0: हाँ चिल्लाया करते हैं, सपने की बात अलग है जी। बेगम, अगर तुमने ऐसा सपना देखा होता तो तुम्हारी तो जान ही निकल जाती, चिल्लाना तो दूर रहा।
2: बस बस, देख ली, पर ये तो बताओ कि देखा क्या सपने में?
0: क्या बताऊं बेगम, इतना दर्दनाक बेचारा चुगताई मारा गया, बड़ी बेदर्दी से मारा गया, उसके तो कांटे और वो छुरी भौंकी गई कि ए है बेगम, मैं तो बस देखते ही बेहोश हो गया।
2: तो क्या चोरों ने तुम

0: तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया।
1: मेरे ऊपर हमला? अम्मा क्या मजाल है किसी की तो मेरे ऊपर हमला करे। मैंने मच्छरदानी का बात इस खूबी से चलाया, इस खूबी से चलाया कि मेरे सामने तो ठहर ना सके। हाँ कि मेरे सामने तो ना ठहर सके। हाँ पर बेचारा चुगताई मारा गया।
0: यानी आप दूर खड़े तमाशा देखते रहे?
1: भाई तमाशा नहीं, उनके पीछे भागा पर चुगताई चुगदी रहा। हाँ जान बूझ कर निहत्ता लड़ गया। हाँ भला ये भी कोई अकलमंदी की?
2: बड़े आए अकलमंद, मेरे भाई चुगताई चुगत और बेअकल, और आप हैं बड़े बहादुर। सारी खूबियाँ आप ही में समा गई हैं। देखिए वो मेरे बड़े भाई हैं, आप कम से कम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न कीजिए।
1: बड़ा भाई यानी कि मैं? कुछ भी नहीं है बेगम, बड़ा तो मैं हूँ। मैं बेगम, मेरे साथ उसने अपनी बहन की शादी की है, क्या समझी?
2: समझी, पर आप भी समझ लीजिए कि उनकी शान के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। उनका ऐसा बहादुर दुनिया में मुश्किल से ही मिलेगा। डरपोक तो आप हैं।
1: मैं बेगम? मुंशी सआदत अली डरपोक? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हाँ और फिर तुम जैसी नामाकूल बातें करती हो कि यार जी चाहता है कि मच्छरदानी का बांध उठा लूं और लगूं जौहर दिखाने। हाँ
2: मैं भी नामाकूल हो गई। दिए जाइए जी भर के गालियाँ, पहले भाई को कोसा और अब मुझे।
1: अरे अरे
2: न हुए अब्बा जान जिंदा वरना।
1: अरे अरे अरे ओफो,
2: सुबह होते ही मैं अपने मैके चली जाऊंगी, आप जानिए और आपका घर।
1: सुबह होने में तो अभी देर है बेगम, कहो तो इस वक्त मैं टांग ले आऊं। रो रो और जोर से रो, और जोर जोर से रो ताकि आसपास वाले भी जान ले कि मुंशी जी ने आज बेगम को मारा है।
2: अजी मुंशी जी की क्या मजाल जो नवाब मुश्ताक अली की बेटी पर हाथ उठाए। मैं कल ही चली
1: जाऊंगी। बेगम बेगम फिर वही आवाज, फिर बिल्कुल वही आवाज जो सपने में सुनी थी। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ बेगम, कोई अंदर है, चुप रहो खुदा के वास्ते।
2: क्या चुप रहूं? मुए ऐसे चोर तो रोज आते जाते हैं, तुम्हारी हिम्मत है तो क्यों नहीं जाकर मुकाबला करते? देखूं आज तुम्हारी बहादुरी।
1: ओ जरा चुप भी रहो बेगम, वरना अगर वो पिस्तौल लेकर धरी आ गया तो फिर जैसे सपने में उसने हमला किया था, जैसे चुगताई पर मेरे ऊपर अगर वैसे ही हमला कर दिया तो मैं गया।
2: आपने सपने में ऐसी ही खबर सुनी थी क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल बेगम, बिल्कुल ऐसी सुनी थी। फर्क इतना था कि उस वक्त चुगताई मेरे पास था और अब चुगताई नहीं उसकी बहन है। जरा होशियार बेगम, बेगम जरा होशियार।
0: अच्छा अच्छा तो क्या उतारू मच्छरदानी के पास? देखो तो कौन हमला करता है और कौन मारा जाता है।
1: बेगम बेगम बेगम देखो देखो देखो कोई पक्ष खींच रहा है। बेगम बेगम ये दरवाजा है ना, दरवाजे की कुंडी खोल कर जरा झांको तो, इतने मैं जरा लंगोट कस लूंगा।
2: अरे रहने भी दो ये शेखियां, जब तक लंगोट कसोगे तब तक सारा सामान भी उठा ले जाएगा, पहले जरा ललकार तो दो।
1: बेगम बेगम बेगम ये काम तुम करो, ये काम तुम करो, ललकारो तुम, देख मैं लूंगा, मैं देख लूंगा, कुछ तुम करो तो बेगम, तुम कुछ करो वरना मैं तो दबा हो जाऊंगा बेगम।
2: देख ली बस तुम्हारी दिलेरी, तुम तो एक ये लो चूड़ियां पहन लो, मैं इन चारों से खुद निपट
1: लूंगी। बेगम बेगम तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं बेगम, तुम मत जाओ उस कमरे में। लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा आगे चलकर ललकारो तुम, मैं पीछे से आकर हमला कर दूंगा, घबराना नहीं है बेगम, जरा होशियारी से।
2: अरे मेरे साथ आओ तो।
1: बेगम बेगम दरवाजा मत खोलो, कहीं वो इधर से ना आ जाए और हम पे ना टूट पड़े।
2: मैं देखती हूँ मुए कैसे सामान उठाते हैं। ये लो मैंने दरवाजा खोल दिया।
1: अरे ये क्या लाहौल विला कुवत, यानी कि ये बिल्ली बनती है।
2: जी हाँ बिल्ली।
1: तो क्या ये बदमाश बिल्ली अंदर थी?
2: जी हाँ बिल्ली।
3: अभी आपने हास्य नाटिका सुनी बहादुरी, लेखक थे राधे श्याम अग्रवाल और निर्देशक थे ब्रिजेंद्र मोहन। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। ये है अनु मलिक का संगीत, जमीर काजमी की रचना, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें फिल्म विजय पथ के लिए।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक को आपने सुना। फिल्म का नाम था विजय पथ, गीतकार जमीर काजमी थे और संगीतकार थे अनु मलिक।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

केकी की आवाज थी, फिल्म का नाम था सॉरी भाई। गीत रचना अमिताभ वर्मा की थी और धुन बनाई थी गौरव दयाल ने। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
4: दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे बॉम्बे टॉकीज में कल यानी 25 जुलाई को दोपहर बाद 4 बजे आप सुनेंगे फिल्मी दुनिया के जाने माने संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की गई एक बातचीत। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। और अब चित्रलोक कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है धड़कन, इसे समीर ने लिखा है और धुन नदीम श्रवण की।

ये था आज का चित्रलोक कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1446 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात

0: सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट

0: पर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत

0: उच्च समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

ये स्वर किशोर कुमार और आशा भोसले की फिल्म का नाम जवानी दीवानी, गीत रचना आनंद बख्शी की और तर्ज राहुल देव बर्मन की है।

किशोर कुमार और आशा भोंसले को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था जवानी दीवानी। और आइए अब सुनते हैं सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की रचना, आवाज किशोर कुमार की और फिल्म का नाम आराधना।

किशोर कुमार के बाद लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज। फिल्म का नाम है सनी, शब्द आनंद बख्शी के हैं और संगीत राहुल देव बर्मन का है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। इनका साथ दे रही थी उषा खन्ना, बोल इंदिवर के थे और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।

आपके लिए कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, खय्याम साहब का संगीत, जानिसार अख्तर के बोल, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम रजिया सुल्तान।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था अनामिका।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म रजिया सुल्तान के इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी।

0: तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बाती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और लेखक मनोज कुमार की।

मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम है हरि कृष्ण गोस्वामी। जब वो 10 बरस के थे तो देश का बंटवारा हो गया और पूरा परिवार दिल्ली में आ गया और रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के एक कैंप में पुराने राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने लगा। मनोज कुमार ने अपनी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही पूरी की। बचपन से ही दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। वो दिलीप कुमार की कॉपी किया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। शुरुआती दिनों में मनोज कुमार ने कुछ छोटे मोटे काम किए, यहां तक कि उन्होंने सिलाई मशीन के सेल्समैन के तौर पर भी कुछ दिन काम किया। बाद में अभिनेता बनने का सपना लेकर मनोज कुमार मुंबई आ गए और यहां उन्होंने कुछ छोटी फिल्मों से की अपनी शुरुआत, जैसे सन 1957 में आई थी फिल्म फैशन।

तकरीबन 5 बरस बाद विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता के जरिए मनोज कुमार को मिली अपनी पहली बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी माला सिन्हा।

सन 1965 में ही विचार आया शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनाने का। फिल्म शहीद का निर्माण बहुत सारे संघर्षों से घिर गया था, लेकिन मनोज कुमार ने ठान लिया था कि ये फिल्म तो बनकर रहेगी और शहीद भगत सिंह के जीवन पर सबसे प्रामाणिक फिल्म यही है जिसमें मनोज कुमार शामिल थे। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा भी नजर आए। फिल्म के गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन।

मनोज कुमार के करियर के दो अलग अलग पहलू हैं। एक वो पहलू है जहां वो रूमानी नायक के तौर पर कई फिल्मों में नजर आए, और दूसरा पहलू है भारत कुमार वाला पहलू, जहां उन्होंने देशभक्ति और सरोकार वाला सिनेमा बनाया। तो चलिए पहले बतौर चॉकलेटी हीरो मनोज कुमार की फिल्मों की कुछ झलक यानी कुछ गाने सुन लिए जाएं। फिल्म पत्थर के सनम।

जब फिल्म शहीद को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया गया, तब ये फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, क्या मेरी नारी जय जवान जय किसान पर फिल्म नहीं बन सकती? मनोज कुमार ने दिल्ली से लौटते हुए कुछ रजिस्टर खरीदे और कुछ नए पेन। दिल्ली से मुंबई तक के सफर में फिल्म उपकार की कहानी तैयार हो चुकी थी और इस तरह सन 1967 में आई रुपहले पर्दे की एक नायाब बेमिसाल फिल्म उपकार।

उपकार के इस गाने की एक दिलचस्प कहानी है। गुलशन बावरा रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। रेल गोदाम में पंजाब से आती थीं गेहूं की बोरियां। जब गेहूं की इतनी सारी बोरियां उतरा करती तो गुलशन बावरा के कवि मन में एक पंक्ति कौन थी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बरसों बरस ये पंक्ति उनकी डायरी में बनी रही। बाद में मनोज कुमार ने इसे फिल्म उपकार में शामिल किया। सन 1970 मनोज कुमार अपनी दूसरी फिल्म लेकर आए, पूरब और पश्चिम। ये फिल्म परंपरा और पश्चिमी संस्कृति के टकराव की कहानी थी। इस फिल्म की चारों तरफ बड़ी तारीफ हुई और ये गाना जैसे भारत के गौरव का गान बन गया।

0: सुनाता हूँ।
1: सन 1972 में मनोज कुमार नजर आए फिल्म बेईमान में। इसी साल मनोज कुमार ने अपने प्रोडक्शन से अगली फिल्म प्रस्तुत की जिसका नाम था शोर।

फिल्म शूर के गाने बेहद मकबूल हुए। सन 1974 मनोज कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई, आजादी के बाद बनते हुए भारत के सपनों से थोड़े से मोहभंग की कहानी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश में हैं कुछ समस्याएं जिन्हें निपटाना जरूरी है। यह फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ नजर आई जीनत अमान।

इसके बाद मनोज कुमार नजर आए फिल्म 10 नंबरी में। मनोज कुमार दिलीप कुमार के हमेशा से जबरदस्त फैन रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका उन्हें मिला सन 1981 में अपनी फिल्म क्रांति के जरिए।

क्रांति के बाद मनोज कुमार की फिल्में ज्यादा नहीं चलीं। धीरे धीरे मनोज कुमार नेपथ्य में चले जाते रहे, लेकिन मनोज कुमार के चाहने वाले कायम रहे। आज भी उनके मैनरिज्म को, उनकी अदाओं को, रुपहले पर्दे पर उनकी मौजूदगी को लोग बहुत

0: सन 1989 में मनोज कुमार ने बनाई फिल्म क्लर्क और सन 1995 में मैदानी जंग। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: 99 मेगाहर्ट्ज पर ये है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। रात्रि के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों के बाद आप विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत सुनेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। हर इंसान का किसी न किसी वस्तु से भी गाढ़ा प्रेम होता है। उस वस्तु के लिए वो किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार रहता है, यहाँ तक कि कई बार अपनों से भी ज्यादा उस वस्तु विशेष का ख्याल रखा जाता है। पर अगर वो खो जाए तो

वो सामान जो हमें सबसे प्यारा हो, हमसे दूर हो जाए, खो जाए, तो मानो हर रिश्ते नाते सुख सुविधा के बाद भी हमें चैन कहाँ। उसकी खोज में खुद तो लगते ही हैं, अपनों को भी लगा देते हैं। ढूंढो।

0: ये तो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि संभाल कर रखी चीजें ही सबसे ज्यादा गुम क्यों होती हैं, और ये गुम हुई चीजें आखिर जाती कहाँ हैं? क्या वो कहीं छुपकर हमें देखती रहती हैं, हमारी परीक्षा लेती हैं कि हम उनकी परवाह करते भी हैं या नहीं?
1: तो

कई बार हमारे सामने दुनिया जहान की चीजें रखी होती हैं, पर मन मन तो वहीं अटका है उस गुम हुई चीज के साथ। सोते जागते उठते बैठते बस एक ही ख्याल कि आखिर वो गई तो गई कहाँ।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। क्या गुम हुई चीजें भी मेले में गुम बच्चे की तरह घर लौटने को बेताब रहती होगी? क्या वो भी मिलने वाले को अपने मालिक का अता पता बताती होगी? फिर कुछ इस तरह होती होगी घोषणा,

सारी चीजें जैसे ही किसी को मिलती है उनकी खुशी भी देखते ही बनती है। शायद उन्हें भी याद आ जाती हैं अपनी गुम हुई चीजें, तभी तो वो झूम कर बताने लगते हैं मिली हुई चीज का हाल, खोजने लगते हैं उनका पता जिसकी है ये चीज।

0: एक बार जो गुम हुई चीज मिल जाए तो यूं लगता है जैसे सारी उम्मीदें हो सकती हैं पूरी। इस जहान में कुछ भी नहीं है नामुमकिन, बस शिद्दत से खोजा जाए तो मिल सकता है कुछ भी। दिल का चैन, खुशियां, सुख, मन की शांति, और दिल कह उठता है
1: तुम जो

0: वज्रदंती सारी दुनिया के दांत मजबूत करे। हाँ।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अतः मछुआरों को 27 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:30 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा श्रोताओं प्राइमरी चैनल पर यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

test over.

0: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: मैं तापुषी शाह छोलदरी गांव की प्रधान हूं। वर्ष 2022 से इस पद का दायित्व।
2: टेस्ट ओवर सर। हेलो, लास्ट टेस्ट ओवर। थैंक यू।

2 means 14 15 test hour. Once more, 5 hours 2 minutes seconds, 21 22 23 test hour.

0: पद का दायित्व निभा रही। नरेगा के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत हर परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन का
1: सर कंप्यूटर्स एंड द माइक्स टेस्ट ओवर।